0: नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि ये ना ही गर्मी से क्रिया करते हैं और ना ही अमल से, इसलिए नुकसान नहीं होता। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता तो नुकसान भी नहीं पहुंचता, दोनों बराबर रहते हैं शांता जी,
1: बराबर एकदम। हाँ,
0: अब हम आगे चलते हैं एल्युमिनियम के बर्तन।
1: हाँ,
0: एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है।
2: तो एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट बोले तो बॉक्सिट,
1: हाँ
2: हाँ, तो उसके और बढ़ने से, क्योंकि सूरीनाम में तो बहुत सालों तक और बॉक्सिट का और निकाला गया और एल्युमिनियम, यानी कि पहले जो खास करके फ्लिक्टोय होते थे ना, हवाई जहाज, सब एल्युमिनियम के बनाया जाता था। आजकल तो क्यों कुछ फ्लिक्टोय है जो कंस्टॉफ को बनाया जाता है, और एल्युमिनियम एक का बोले मेटल सोर्ट है, धातु है ना।
0: और ये भी शांता जी, और ये जो कुकर है भारत में, कहते गैस की बचत हो, खास की बचत हो, तो जो प्रेशर कुकर है, दाल उसी में बनती ज़्यादातर, वो भी एल्युमिनियम। तो
1: जी
0: हाँ जी,
2: तो एल्युमिनियम की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना शांता जी का जो पिटारा से निकाला है वही गीत और चला देते हैं।
0: हाँ जी जरूर।

सुंदर सुंदर गीत सुनने वालों आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करके रखी हूँ। और संजय जी जो मैंग पनेल के पीछे है और आपके लिए चला देते हैं सुनने के लिए, साथ ही साथ हम भी यहाँ सुन रहे हैं। और आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर यहाँ पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जो ज्योति का प्रकाश आपकी सेवा में है।

0: ब्रेक के बाद बबली जी उपस्थित हो गई है और आगे हमको सुनाएगी बर्तन के बारे में, कौन सा बर्तन में खाने से उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। बबली जी
1: जरूर शांता जी, अब मैं आप सबको बताऊंगी एल्युमिनियम के बर्तन।
0: एल्युमिनियम के बर्तन,
1: हाँ जी, एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है, यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है।
0: इतने सारे हानिकारक शरीर में,
1: हाँ जी,
0: एल्युमिनियम के बर्तन में।
1: और इसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं।
0: हल्लो कल्लो बात।
1: एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी 87 शांता जी।
0: इसके बारे में मैं सुनी हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने से उसमें जो विटामिन है खाना का, उसका नुकसान होता है।
1: खाना जल्दी तो बन जाता है,
0: हाँ,
1: लेकिन पर हानिकारक है, कि उसके जितने भी पोषक तत्व है सब नष्ट हो जाते हैं।
0: आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है?
1: हाँ जी
0: है। और इसके बाद आप जो पढ़ के सुनाई है हमको, इसके बाद आप इस्तेमाल करोगे? ये प्रश्न हो जाता है।
1: है शांता जी, हाँ। दाल उसमें अच्छी बनती, मैं खाली दाल बनाती हूँ और कुछ नहीं बनाती।
2: पर कहने की तात्पर्य यह है शांता जी, इस बात को सुनकर मैं भी बहुत हैरान हूँ, क्योंकि पहले सूरीनाम में जब शुरुआत में जब हम लोग के समय पे,
0: हाँ?
2: और नौकरी मिलता था तो सबसे पहले एगो एल्युमिनियम के और एटन्स बक खरीदा जाता था ना,
0: हाँ, ब्रोथ्रोमल
2: घर था,
0: हाँ।
2: तो सभी के उसी प्रकार से एल्युमिनियम के बाकिये होते थे,
0: हाँ?
2: और पर उसमें हम लोग सब दिन उसे प्रयोग किए हैं,
0: हाँ?
2: और बबली जी कुछ कहने वाले हैं?
1: मैं कह रही थी भारत में भी पहले सबसे पहले एल्युमिनियम के ऐसे आए, टिफिन लोग लेके जाते थे,
0: हाँ, हाँ।
1: पीतल के चले, फिर स्टील के चले, आजकल तो जिसमें खाना गर्म रहता है आजकल वो चलते हैं ऐसे।
2: तो कहने के तात्पर्य ये है कि उसमें अगर जब गर्माएंगे तो, और यानी कि उससे शायद कुछ हो सकेगा, पर ज़्यादा तादाद में पहले तो एल्युमिनियम का,
1: हाँ, भारत में भी इस्तेमाल करते थे, शायद जो पतीला हो उसमें बनाने से होगा, खाली टिफिन में रखेंगे उससे नहीं होगा
2: ऐसा। तो आगे के क्या संदेश है? कहने के तात्पर्य है जो हमारे खोजी सेना है, जो खोज करके और रखे हुए है, तो उस पर हम लोग को थोड़ा से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जरूर ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें हमारी खोजी सेना खोज करके और संदेश को रखते हैं और हम सब इसे और जरूर,
0: हाँ, और जरूर
2: प्रस्तुत करते हैं,
0: हाँ ना। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब बबली जी ने कहा कि पहले बर्तन सोना का, पीतल का, चांदी का, लोहा का, हैंडलर्स जो है, मेरे ख्याल से और देख रही हूँ, सोचती हूँ आसान करने के लिए और बेचने के लिए तो ये एल्युमिनियम के इस्तेमाल की है। आज के दौर में भी जो हम दुकान में जाते हैं देखते हैं और रिक्लाम भी देखते हैं, तो जो लोहा का हरिया है, पीतल का जो पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे, वो सब फिर वापस आ रहे हैं,
2: धीरे धीरे बिल्कुल वापस आ रहे,
0: हाँ,
2: हैं,
0: हाँ, वो सब वापस आ रहे हैं,
2: लोहा का भी,
0: हाँ। तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि क्यों सब ऐसे करते हैं, पैसे के लिए करते हैं तो कितना हानिकारक होता है समाज और लोगों के लिए।
2: जरूर। और आगे का संदेश क्या है बबली?
1: हाँ जी, आगे क्या है? मिट्टी के बर्तन शांता जी,
2: आजकल तो मिट्टी का बहुत चल पड़ा ना,
0: मिट्टी का बर्तन भारत में, और हम देखे तो तुर्कैये में, मारोको में वो सब मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं।
1: भारत में भी शांता जी, पंजाब, हाँ, में अपनी नानियाँ जाते थे
0: जी,
1: तो मिट्टी के बर्तन में ऐसे एक हंडिया थी उसमें वो दाल चढ़ा देते थे, हाँ, मेरी नानी, और मिट्टी के बर्तन में ही वो जाता दूध चढ़ाते थे और दूध एकदम गुलाबी हो जाता था,
0: हाँ, उसका रंग उसमें आ जाता ना, हाँ, या
1: घड़े तो होते मिट्टी के, देखो जिसमें पानी भर के रखते हैं,
0: हाँ,
1: वो तो मिट्टी के हैं,
0: और जो उस मिट्टी के घड़े में पानी जो धर दे ठंडा रहता है, आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि आइस कास्ट कूल कास्ट
1: जैसे। और जब हाल में फ्रिज नहीं आए थे तो तब घड़े में सब पानी भर के रखते थे।
0: हाँ देखो ना,
1: हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी घड़े होते थे।
0: हाँ
1: तो जब जिसको प्यास लगी तो वहाँ पर जाके पानी पी लो।
0: तो सोचो ना, पहले कितना आसान से और कितना आसान तरीका से सब इस्तेमाल होते थे, और जो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा था, और इसमें कितना बदलाव आ गए धीरे धीरे। और फिर से जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आज धीरे धीरे वो सब फिर से इस्तेमाल करने लगा है। इस बात इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ ना, टॉयलेट पॉट जो है, हाँ भारत में सब ऐसे नीचे बैठे ना कुकुर मुकुर ऐसे, हाँ जो आज के दौर पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, तो हमारा शरीर जो है, गोड़ जो है, वो कुकुर मुकुर बैठने के अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। तब पहले ऐसे बैठ के, यानी जिस भारत में सब बैठ के शौचालय करते हैं, तो पेट एकदम से साफ हो जाता है। और यहाँ पर टॉयलेट पॉट बना दी है कि बैठकर ऐसे बैठकर शौचालय करो। तो अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि शौचालय जो होता है ना, वो पूरा तौर से नहीं निकलता है, साफ नहीं, पेट साफ नहीं होता है। अब विज्ञान लोग भी अब कहते हैं, जो भारत में जैसे लोग पहले बैठे थे, आज में बैठे हैं, वैसे बैठकर शौचालय करो।
1: जो आजकल है ज़्यादातर शौचालय, तो ऐसे दो ऐसे पत्थर होते थे शांता जी।
0: हाँ हाँ अच्छा हाँ।
1: तो वो पत्थर का ही था, मिट्टी का बना हुआ।
2: चलो हाँ। ये कार्यक्रम में हम जोड़ देते हैं एक गीत जो, और और कहीं हम भटक ना जाए अपने विषय से।
0: नहीं नहीं, भटके के बात नहीं है, बल हम ये इस पर ये कहना चाहती हूँ, पुराना तरीका से जो हम जीते थे उस समय पे, और आज में नहीं बल्कि कितने सालों से ये नई तरीका जो लाई है, और विज्ञानी लोग इसमें देखे नहीं कि पुराने जो है वो सही है।
2: और इसमें ये भी होते थे शांता जी, कहने के है कि आजकल देखो तो कितने लोगों के घुटनों का भी दर्द होता है ना, यानी कि स्पीर जो कनी आदि के
0: जी,
2: तो उसका भी शायद उसका भी कारण होगा कि कुछ जो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं।
0: आप सही है संजय जी, आप सही है। हाँ हम प्रयोग नहीं करते, हम तो चेयर पे बैठ जाते हैं, बांसतल पे कूद के बैठ जाते हैं। अरे बांसतल पे भी कूद के बैठो तो पलटी मार के बैठो, ताकि जो बैठने के जो आसन है ना वो भी हो सकता है। पर या किस किस को मैं संभालूँ,
2: किस किस को हम संभालो। हम चलते हैं गीत के ओर, और गीत का बोल है कि रोटी कैसन रोटी किस प्रकार के होते हैं, सिर्फ गोल गोल होता ना?
1: रोटी गोल भी होती है, फिर कांद भी होती है, पराठा कह लो उसको, और ऐसे एक त्रिभुज भी होती है, जैसे पिरामिड की तरह।
0: हाँ।
1: रोटी जैसे मर्जी बना लो,
0: रोटी जैसा मर्जी बना लो, बर
1: तो अपने ऊपर है।

0: कि रोटी किस प्रकार के होते हैं और रोटी के ओर बढ़ने से पहले नहीं, रोटी के ओर बढ़ेंगे नहीं बबली जी, क्योंकि अभी तो बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है ना।
1: हाँ जी, मिट्टी के बर्तन,
0: मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है।
1: हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते सुनने वालों, मिट्टी के बर्तन। शांता जी।
2: जी हाँ, मिट्टी के बर्तन।
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं।
0: शांता जी, हम लोग सूरीनामा में मिट्टी के बर्तन होते थे। वैसे तो मैं खाना बनाता नहीं था और पर खा लेता था, पर मिट्टी का बर्तन मुझे नहीं ख्याल है।
2: मुझे भी नहीं।
0: सूरीनामा में ऐसा नहीं होते थे, वही बस मिट्टी का दिया आदि बनाया जाता था
2: जी,
0: पर
2: मिट्टी का बर्तन
0: नहीं, ना जानी।
2: कलाई के बर्तन
0: होते थे और प्लास्टिक आदि का भी,
2: लोहा अल्मीनियम मिट्टी।
1: भारत में, शांता जी,
2: हाँ जी,
1: मैंने देखा है शहरों में लोग नहीं इस्तेमाल करते थे मिट्टी के बर्तन, लेकिन गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। हम अपनी नानी यहाँ जाते थे, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दाल बनती थी, दूध गर्म करते थे, मसाला पीसना है, सब मिट्टी के बर्तनों में होता था। और गाय भैंस को पानी वगैरह देना है, सब मिट्टी के बर्तन में होता था।
2: तो गांव के रहने वाले तो बहुत से तंदुरुस्त रहते थे।
1: हाँ, और दूध भी लोना है, छाछ सब कुछ बनता है, वो भी
2: मिट्टी के घड़ा में,
1: पानी में, घड़े में पानी रखते थे कि ठंडा रहे। सब कुछ मिट्टी के बर्तन। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
2: हाँ जी।
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है।
2: देखो
1: कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं, और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग से स्वाद भी आता है। पानी पीने के पात्र में विशेष में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जल पात्रम तु तमस्य तद्भावे मृदय हितम पवित्रम शीतलम पात्र रचितम सफ्टिकेन यत कांचेन रचितम तदत वैज संभवम। अर्थात पानी पीने के लिए तांबा, साफ्टिक अथवा कांच मात्र का उपयोग करना चाहिए। संभव हो तो वैजल जड़ित पात्र का उपयोग करें। इनके अभाव में मिट्टी के जल पात्र पवित्र व शीतल होते हैं। टूटे फूटे बर्तन से अथवा अंजलि से पानी कभी नहीं पीना चाहिए।
0: ये भी आपने सुने और हमारे संदेश जो रखा गया कि किस प्रकार से कितने बर्तनों का अपप्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से आप उसे प्रयोग करें तो आपके लिए हानि या लाभ क्या है, उसमें और बातचीत किया गया। शांता जी, अभी तो बात ये है
2: जी
0: कि जैसे कि हम लोग मिट्टी का बर्तन सूरीनाम में नहीं जानते हैं
2: ना,
0: एल्युमिनियम के तो हम लोग खूब तादाद में जानते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के न सिर्फ वो जो ब्रोथ ट्रॉमल होते थे और भी बर्तन आदि होते थे ना, कुछ कुछ मेरे ख्याल से।
1: हाँ, पतीला, कढ़ाई, सब कुछ एल्युमिनियम।
0: जो एक कढ़ाई जो है सूरीनाम में जो बनाया गया, जो नीचे में गोल सा होता है, वो ज़्यादा तादाद में सूरीनाम में बनाया जाता ना, एल्युमिनियम का।
2: हाँ, सूरीनाम से जब यहाँ पे निवासी, सूरीनाम के निवासी जो भी यहाँ आए ना, तो वो भी वही कढ़ाइया जो कहते हैं ना।
0: हाँ, कोफर में अपन ले आए थे।
2: हाँ, वो सब लेकर आते थे, तावा भी लेकर आते थे, ऐसे कई चीज़ें जो सब वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, और अपना सुविधा के लिए तो वहाँ पर से भी लेकर आई है।
0: अपने सुविधा के लिए वहाँ से लेकर आए, और यहाँ पर क्योंकि वो इस प्रकार से बनाया गया है, क्योंकि सूरीनाम में जो चूल्हा होते थे ना, तो उस पे एकदम आराम से वो बैठ जाते थे, उसी माध्यम से मेरे ख्याल से वो बनाया गया वहाँ।
2: जाने ग्वेंती एगो ग्वेंती ना कि वो सब में बनावे के, और यहाँ पर आकर दूसर तरीका से बनाना, दूसर कढ़ैया हड़िया में बनाना, तो आसान नहीं लगते थे और स्वाद भी नहीं आते थे उससे, इसलिए सब वहाँ पर से जैसे सब ग्वेंती ना ग्वेंती, इसलिए वहाँ से सप्लाई।
0: तो शांता जी जो आप कह रहे ग्वेंती थे और लेकर के आए यहाँ पर, हाँ। पर देखा जाए कि हमारे देश में तरक्की हो रहे है और कुछ समय बाद तो सिर्फ यहाँ इंडक्शन से खाना बनाया जाएगा, तो वो कढ़ाइया यहाँ प्रयोग हो पाएगा?
2: वही तो दुखद की बात है, तो कढ़ाइया तो अब यहाँ पर सब इंडक्शन हो गए, तब सब कढ़ाइया कास्ट में रहता है।
1: नहीं शांता जी, काशी में नहीं जाएगी, आजकल तो चूल्हे आ गए हैं।
2: ओ हाँ,
1: वैसे मैंने देखा है, नहीं कहाँ देखा था पर टीवी पे देखा है कि बने बनाए चूल्हे हैं, ऐसे लोग रख लेते हैं अपने घर में और उसके ऊपर खाना बनाते हैं।
2: इलेक्ट्रिक?
1: ना ना ना, वैसी है।
2: ओ, गैस से?
1: हाँ
2: हाँ।
1: इलेक्ट्रिक है कि क्या है पता नहीं, मैंने कहाँ देखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देखे है मैंने।
2: हाँ वो भी हो, हाँ सच में संजय जी की ऐसे नहीं कि वो सब कास्ट में रह जाते हैं ना, पर प्रयोग कर सकते हैं। कितने तो घर में महंगे से महंगे क्विकन सेट बना कर धरते हैं और पाछे में एक अलग सा किचन बनाते हैं और वहाँ पर खाना बनाकर और सब गला कर घर में धरते हैं।
0: ऐसा होता है?
2: ऐसा होता है भी।
1: कोई कहते मसाला लग जाएगा, टाइल्स खराब हो जाएंगे
2: जी,
1: तो मसाला है, अंदर में नहीं खाना बनाते?
2: नहीं नहीं, स्पेशल सब बाहर बनाते हैं, स्क्यूर में, स्क्यूर में सब खूब सजा देते हैंगा और किचन वहाँ बना देते हैंगा, तो वहाँ पर पकाकर और डोसा जो छोंकता है और ऐसे ऐसे खाना।
0: चलो चलो थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं।

अम्मा एक रोटी दे दे, ये फिल्म जो पुराना फिल्म से निकाला गया है एक गीत जिसमें, और जाकर के खाने के खोज में बच्चे और निकलते हैं ना। बबली जी, आज का कार्यक्रम में आज संदेश आपने रखे कि किस किस प्रकार के और पात्रों में खाना बनाना उचित है, यानी कि ठीक होते हैं और ना ठीक होता भी, और

0: भी अन्य देश में तो वो पर भी हम देखते हैं तो ख्याल आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी आपके लिए आपके सामने उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
1: और ये जो अभी प्रश्न किया गया ना, पीतल, पीतल बोले जो कोपरा जो हम लोग के थाली होते थे ना सूरीनाम में, तो थाली में ज्यादा तादाद में कुछ बड़े लोग आते थे तो उसका खाना मिलता था उसमें ना,
0: है पहले पहले में। हाँ
1: पीतल के थाली का बोलते, थाली में खाने वाला का
0: जी।
1: बबली जी कुछ कहने वाले हैं?
2: मैं ये कह रही हूँ, मेरे को ध्यान आया कि हमारे घर में बड़े लोगों के लिए अलग से बर्तन होते थे। हमारी दादी, हमारी आजी के लिए पीतल का थाल, उनका गिलास, उनका चम्मच और कटोरी, उनमें खाते थे। और पापा और ताया जी के लिए, अरे दादा के लिए अलग से, और बच्चों के लिए थोड़े छोटे छोटे दूसरे बर्तन होते थे, हम लोग उसमें खाते थे।
1: तो शांता जी इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
0: हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपन अपन रेखस भी होना चाहिए और उसमें जरूर से कुछ ना कुछ महत्व भी होगा ना।
2: हाँ कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के लिए थोड़े अच्छे बर्तन, थाल।
0: हाँ
2: थाल आप जानते हो कि बड़ा होता
0: हाँ,
2: है
0: हाँ।
2: और पापा और उनसे थोड़े छोटे, ताया जी तो उनके लिए थोड़ा और छोटा, बच्चे छोटे
0: तो और छोटा,
2: तो बच्चों के लिए और छोटा।
1: तो सुनने वालों अगला गीत की ओर हम बढ़ेंगे और अगला गीत का बोल

0: करे के निभाना। सुनो जी ओ मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के साथ आपको तो पता चल जाता है कि ज्योतिका प्रकाश यहाँ से संपूर्ण को होने को आ गई है। और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
1: दीवाना है तेरा,
0: के कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खिमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। साथ में और कनेक्ट हो गए थे हमारे कोलेगा साथी अनुराधा जी। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। अगर कुछ टूटिया भी हो गए होंगे तो क्षमा कर देना। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ, मैत मुकेश और शारदा जी।

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी, रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

0: हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, जरा ठहरो तुम।
2: अरे मैया, तूने तो मेरी टांग ही तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी?
1: अरे तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

थी मुकेश, मैं थी मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है। चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत, इस तरह से

मैं थी मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश की, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वैत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइती मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जय किशन के साथ। पर कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम, बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निगदी सेफ न सस्त, मैत मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

पुरी नारायण जी और अलका याग्निक मिलके आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाव हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

ओ मेरे प्यार हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं। एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है, बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं, सबसे प्यारा है। वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

क्या बात है, राहत फतेह अली खान और सुसाना मिलके आपको सुनाए हैं।

साथियों, आपके जीवन की हर सुबह आप पर आशीर्वाद बरसाए, आपको एक खूबसूरत और यादगार दिन की शुभकामनाएं, यही मेरी विनती है परमात्मा से। और मित्रों, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टता है। अगर आप संतुष्ट रहना सीख लोगे मित्रों, फिर आप इस जीवन की यात्रा को आसान से पार कर जाओगे, अन्यथा हमेशा शिकायत करते रहेंगे। तो अब क्या करना चाहिए आपको? भाई बहनों, वो व्यक्ति को महावीर तभी कहा जा सकता है जब वो विकट परिस्थितियों का हंसी खुशी से सामना करता है, और न कि जैसे एक बाल्टी पानी उठा लिया तो वो महावीर बन गया। मुश्किल से मुश्किल काम को सही तरीका से पार कर जाए तभी वो महावीर है मित्रों, तभी आप महावीर हैं।

मित्रों, ईमानदार वे सच्चा दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का और तनाव मुक्त अनुभव करता है, और ना कि जैसे आप हैं धोखाधारी, ईर्ष्यालु, बेईमान इत्यादि इत्यादि। अच्छा अच्छा, आप ऐसे नहीं हैं, तब तो ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये। इसी तरह आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और भाई बहनों, अपने दुखों को भूलने के लिए परमात्मा को याद करो, न कि इधर उधर देखभाल कराओ या किसी ने जादू कर दिया होगा। इसी तरह आप सोचते रहेंगे, आपको सोच विचार आपको और दुखी कर देगा। मित्रों, तो बचा एक ही रास्ता, आप अपने धर्म के अनुसार अपनी परमात्मा से सच्चे मन से और पूरी विश्वास के साथ बात करना, फिर देखना वो आपके लिए क्या करता है। मित्रों, क्या करेंगे परमात्मा आपके लिए।

साथियों, आप अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और घबराने से आपका मन और भी विचलित हो जाएगी। इसलिए 4-5 बार लंबी लंबी सांस लेना और शांत हो जाइए। विकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ निकालना मित्रों सबसे मुश्किल काम है। इसलिए खुद में विश्वास रखो और परमात्मा में भरोसा करना, सब आसान लगने लगेगा मित्रों, सब आसान लगने लगेगा।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सेवा में मैं हूँ संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। सभी जिनके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, नया परिवार जो आए हैं परिवार में, तो आप सभी को हार्दिक से बधाई दिया जाता है। सभी जो अपने काम की तैयारी के ओर बढ़ रहे, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और ये भूलना मत कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा संदेश रखा था कि हम ये ना सोचे कि हमारे देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पर हम जरूर ये सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सभी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं स्कूल यानी कि अपना ज्ञान के ओर पढ़ने के लिए, तो माँ सरस्वती को आपको भूलना नहीं चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमम। जरूर माँ सरस्वती का ध्यान दे करके और निकलना।

और जो सफर पे आए हैं हमारे देश में, तो आपको एक फैन फकंसी टू हवेंस। हॉलैंड एक सुंदर देश है जहाँ पर लगभग 18 मिलियन व्यक्ति रहते हैं और यहाँ कुछ 23 मिलियन साइकिलों भी होते हैं। हर एक घर में साइकिल जरूर होते हैं। तो अगर आप हॉलैंड में आए हैं तो जरूर आप कुछ उसके बारे में यानी कि थोड़ा से शेयर करके जाना। अन इसी प्रकार से अन्य शहरों जैसे हीथोरन है जो बनाया गया है, जहां पर रास्ते नहीं पर पानी के माध्यम से लोग अपने कार्य काम करते हैं, तो वो ऐसा स्थानों को जरूर देख के जाना।

जो कुछ 200,000 के तादाद में हॉलैंड में रहते हैं, तो तनहाक जैसा शहर में 3-4 मंदिरों है। अलमेर में मंदिर है और विष्णु मंदिर के नाम से, गोल्डन टेंपल के नाम से बनाया गया है एक इतना सुंदर मंदिर तनहाक में, जो कि जा कर के राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर और इसी प्रकार से और भी मंदिरों है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर, राम मंदिर और भी मंदिरों जो वहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से जाकर के अरनहेम में भी मंदिर आप पाएंगे। वहाँ हर रविवार को 2 से 5 बजे तक मंदिर लगाया जाता है। दनहाख में जो कि जाकर के राधे कृष्ण मंदिर जो 6 से और 8 बजे तक लगाया जाता है। दनहाक में खासलान देव मंदिर को, जहां हर रविवार को 2 बजे से कार्यक्रम 5 बजे तक लगता है। इसी प्रकार से अम्स्टरडम शहर में द राधे कृष्ण मंदिर जो उस दौरप में है, और वो भी सुबह में हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक हर रविवार को लगाया जाता है। सभी सेवकों जो मंदिर में सहयोग देते हैं,

इसी प्रकार से हॉलैंड में कितने स्थानों हो जो कि आप देख सकते हैं हेर फिल बसिंस आर्दन इन नीदरलैंड, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। तो पहला भजन की ओर हम बढ़ेंगे आपके साथ जुड़े हुए।

गीत तेरे लिए राधा, ये सुंदर सा गीत का जो 2025 में गाए गए है स्वस्ति मेहुल के आवाज में, सुंदर सा गीत को और सुनते हुए हम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मीना जी ने एक संदेश को और रखे है व्हाट्सएप पे, और संदेश इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हाथ के लकीरों भी कितना अजीब है, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं रहती है।

ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए।

सुनने वालों, ये जरूर कहना चाहूँगा कि भाग्य से जितना ही अधिक उम्मीद रखेंगे वे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा।

आज एक ऐसा दिन बनाइए, अपना मित्र को ऐसा सोचिए कि रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भारत संभाई। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जैसे हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के साथ।

जाता भी है कि अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है।

किसी संत ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए।

समय अवस्मरण, सात समय अवस्मरण दुनिया की सबसे अच्छे भेंट है। सुप्रभात कहते हुए मैं अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

प्रकाश गांधी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कनक भवन के अंतर्गत में हम सुने। सुनने वालों, अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने को जाए तो कनक भवन भूलना नहीं, क्योंकि उसका वृतांत तो बड़ा कठिन है। पुराने समय के बात है, अयोध्या में कोई ऐसा स्थान था जहां लोग बहुत कम जाया करते थे। मंदिर कनक भवन जो थे उसका कर्ता धर्ता श्री राम प्रसाद जी कोई प्रकार से, और जो आरती और जो चढ़ाव आता था मंदिर में उसी से सभी संतों और वहां का सेवकों का खाना पीना और होते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन मंदिर दर्शन करने को कोई नहीं आए, वहाँ कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला था। कोई आए ही नहीं तो चढ़ाव मिलेगा कैसे? पर सभी सेवकों और संतों जो मंदिर से है और उनका तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो राम प्रसाद क्या कहते हैं अपने एक चेले से कि जो जहाँ से रोज का और राशन लाया जाता था, एक बनिया जिनका नाम पलटू बनिया था, और कहते हैं अपने चेलों से जाकर के वहाँ पलटू बनिया के पास इस बात को कहो कि आज कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला है, हमें कुछ राशन मिल जाए तो हम बाद में जो पैसा मिलेगा उन्हें भर देंगे। पर पलटू बनिया में ये था कि हम किसी को कर्ज नहीं देते, कर्जे पे नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के जो चेले थे बहुत गुजारिश किए, फिर भी पलटू बनिया ने कहा कि कर्ज में हम कुछ नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के चेलो वापस जा कर के राम प्रसाद जी से ये संदेश सुनाते हैं कि पलटू बनिया ने कहे कि करस पे हम कुछ नहीं देते हैं, जो लेना है तो नगद ले लो। राम प्रसाद जी बस यही कहते हैं जो भगवान की इच्छा। और इसी प्रकार से उस दिन संतों और सेवकों बस जल पान करके और सो गए। पर कनक भवन में एक नियम था, सभी जो रात को राम जी के आगे बैठ करके और उन्हें भजन को सुनाते हैं, सभी संतों और सेवकों सो गए, पर राम प्रसाद जी रोज का कार्य अपने करने लगा, जा करके राम जी के पास बैठ करके और भजन करने लगा। और इसी प्रकार से जब अपना कार्य कर चुके तो रात को एक चादर उड़ा दिया जाता था और भगवान को चादर उड़ा करके राम प्रसाद जी भी सोने को चले गए। रात व्यतीत होता है और कुछ रात के सुबह होने को आ रहे हैं। पलटू बनिया के दरवाजा पे ठोका जा रहा है। कहा जाता है कि पलटू बनिया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और इस बात को सुन करके पलटू बनिया के लगा कि कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। मन में यही आशा लेकर के पलटू बनिया निकल रहे हैं कि अभी डांटूंगा ये बच्चों को, इतना रात हो गए हैं और अभी बाहर खेल रहे हैं। जैसे पलटू बनिया दरवाजा खोलते हैं तो वहां देखते हैं चार चार सुंदर सुंदर युवा यानी कि बच्चे दरवाजा पे खड़े हैं और कहते हैं
दरवाजा खोल, और जैसे दरवाजा खोलते हैं पलटू बनिया सभी अंदर आ जाते हैं। बच्चे इतना सुंदर था पलटू बनिया, उसे देखते देखते मोहित हो गए। और बच्चे क्या कहते हैं पलटू बनिया से कि आज तुमने राशन राम प्रसाद जी के नहीं दिए हैं। देखो एक चादर जो चारों बच्चे ने ओढ़े थे, और वो पलटू बनिया के इशारा से दिखाते हैं कि देखो ये चादर में कुछ और पैसे बांधे हुए हैं, इसे लेकर के और आप जरूर से जरूर राशन राम प्रसाद जी के पास भेज दीजिए। पलटू बनिया देखते हैं चादर एक कोने में गांठ बना करके ढेर सारे पैसे बांधे हुए थे। पलटू बनिया देख करके हैरान हो गए और कहते इतना में तो हम साल भर राशन नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत सा पैसा है। पर वो बच्चे क्या कहते हैं, कहने के तात्पर्य ये है कि पलटू बनिया का दुकान बस एक छोटा का किराने के दुकान थे, और उनमें और तभी बच्चे कहते हैं कि आप इतना हैरान मत हो, आपको बस रोज थोड़ा सा जितना राम प्रसाद जी के इच्छा है उतना ही राशन बस दुकान पे भेजना है। इसी बात पे और बच्चों फिर चले गए। अब सुबह जब होते हैं तो पलटू बनिया अपना गाड़ी में सामान भर करके और आकर के राम प्रसाद जी के पास पहुंचते हैं। राम प्रसाद जी देखते हैं पलटू बनिया ढेर सारे सामान राशन आदि लेकर के पहुंचे, और वहां जाकर के राम प्रसाद जी के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने रात में क्यों बच्चों को भेजे, हमें तो क्षमा कर दो, हमने गलती कर दिए हैं, और आज से आपके लिए और रोज राशन पहुंचा दिया जाएगा। राम प्रसाद जी कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा मैं तो कोई बच्चों को नहीं भेजा था। पलटू बनिया ने तभी सारा कथा का वृतांत राम प्रसाद जी को और सुनाते हैं। राम प्रसाद जी ये कथा को सुन करके और समझ गए और जाते हैं और भगवान राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सदैव आपके सेवा में लगे हूँ, पर आज आपने ये संदेश हमें रखे कि आज हमें आप दर्शन नहीं दिए, और ये पलटू बनिया का दर्शन दे करके भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। और होता है क्या, पलटू बनिया भी वहाँ जा कर के इस बात को समझ गए कि जो चार बच्चे के रूप थे वो स्वयं भगवान अपने भाइयों के साथ वहाँ जा कर के उपस्थित हुए थे। दोनों साथ मिल कर के और रोते रोते भगवान के चरणों में, और तभी राम प्रसाद जी जो बेहोश हो गए यानी कि मूर्छित हो गए, और उनको स्वयं माँ सीता ने अपने

राम जी का दर्शन करने को जाए अयोध्या में, तो ना सिर्फ राम जी का दर्शन पर कनक भवन, हनुमान भगड़ और इसी प्रकार से जमुना जी के आरती, भरत जी जो गुफा में और 14 बरस बैठ करके और तपस्या किया था, वो स्थान जहाँ पर अयोध्या में हनुमान जी जब पहाड़ लेकर मौस जीवन जो लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण जी के अंतर्गत, और भरत जी ने बाण मारे थे, सभी स्थानों को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सूर्य मंदिर जो बनाया गया है, जरूर देख के आना।

0: एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान
1: की जय।
0: ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है, ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्री सूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मास दिवस का दिवस है वो मरमन जाना कोई, रवि समेत रथ क्यों निशा को निर्भ। जिस समय त्रेता युग में त्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था, त्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष हो सकता थी। त्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया, राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के एक महीने तक रक्षा किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना कितने मनुष्य थे। राम जन्म समय जाने ब्रह्म आदि पधारे, धाये सूर्य चढ़ विमान देव वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नियोर धारे। भगवान राम संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे, देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ सरजू जी का जल दूध के सामान निर्मल उज्जवल धारा बहने लगी। वेद मंत्र शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है, इसलिए सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, एक महीने के शुद्धिकरण हो जाए जो हिंदू में नाम रखा जाता है। एक मास के एक दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम एक मास के एक दिन का। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जंगल था, इसी के जल से राजा का कुछ दूर हुआ, शिकार को नहीं किए चले गए अयोध्यापुरी। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित दर्शन होता है इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया तो मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360,989 मंदिर पाए, सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वो बेदी बनाई। नीचे आरती घाट जिस पर आरती होती घंटा बना हुआ है, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 कोठों का जल इस कुंड में डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं त्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, 7 बार जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, सो 360 कोठ यात्रा का फल मिलता है। दोनों कुंड अग्र कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड खड़गा कुंड दुर्गा कुंड काल कुंड सतीश कुंड ऋषि कुंड मणि कुंड श्याम कुंड वेद कुंड विद्या कुंड सीता कुंड अग्नि कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड इतना लेकर के 360 कोठ का मस्तक। तीर्थों में 2 स्थान पौराणिक हैं। सबसे प्रथम माँ सरजू जी जो भगवान राम जी के जन्म के 6 लाख वर्ष पहले से बह रही, श्री गुरुवर्षित जी महाराज की देन है जो कि अयोध्या में सरजू जी विद्वान। रामायण में दोनों का वर्णन है, बालकांड में सूर्य कुंड का वर्णन लिखा हुआ है, उत्तरकांड में माँ सरजू जी का वर्णन है जो भगवान राम जी ने अपने मुखारविंदों से माँ श्री सरजू जी का वर्णन किया। श्री अवधपुरी समझ लेते हैं आप लोग ना, श्री अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उतर ऋषि सरयू गए बावनी, जो मंजई सो विनय प्रयासा मम समीप नरे पा।

ममु धामदा पुरी सुख राशि बोले मुनि सुनि प्रभु की वाणी धन्य अवध जही राम बखानी अवध शरी के प्रिय नहीं और कोई जाने यह प्रसंग कोई कोई यद्यपि है वैकुंठ बखानी। अति सुंदर है क्योंकि मेरी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सलिला सरिता पावनी वशिष्ठ पुत्री नेत्र यात्री शैल कुमारी की बैठी कैक नाम है माँ सब्जी का, जो कि पाप को जलाकर भस्म कर देती हैं। जो भी मनुष्य श्री सरजू जी में स्नान करते हैं, श्री सरजू जल को मस्तक पर लगाते हैं एवं सरजू जल को चरणामृत लेते हैं, सो मनुष्य तपस्या के बिना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरी अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी बात करने वाले प्राणी सो मुझे मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरी अयोध्यापुरी सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली है, धन धान्य संतान आदि को बढ़ाने वाली है। श्री गुरुवर्ष जी महाराज भगवान प्रभु राम जी के मुखारविंदों से वर्णन सुन करके कहते हैं, धन्य अयोध्यापुरी धन्य है, किसी स्वयं नारायण ने अपने मुखारविंदों से प्रशंसा की है, अयोध्या साक्षात साकेत धाम है, वैकुंठपुरी के समान है, सभी तीर्थों का मस्तक है। सात पुरियां हैं, सबसे ऊंचा स्थान श्री अयोध्यापुरी जी का। हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, पांचों देवता, भोग लगे, सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को अपना नाम कह करके प्रणाम कर दीजिए।

ये सुंदर सा गीत जो सूर्य देव के अंतर्गत हम सब सुने, और उससे पहले जो आचार्य सूर्य कुंड के और अयोध्या से जो अपना संदेश को रखे थे, तो ज़रूर आप अगर अयोध्या जाए तो वहाँ पर वो कुंड का दर्शन करके, और अपने जैसे कि आचार्य जी ने कहा है कि 7 बार उस जल से अपने माथे से और टप करे। सुनने वालों, मैं आपके सेवक संजय कुछ देर तक आपके साथ और व्यतीत करने वाले हैं, पर अब कार्यक्रम का मोर कुछ और दिशा के ओर ले जाने को कोशिश करेंगे। हम न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत का मांग करने वाले श्रीमान रबीन जी जो फैखल से ये कार्यक्रम को सुनते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों से जुड़े हुए कि मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। सुनने वालों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो है, इंटरनेट द्वारा आप दुनिया के हर एक प्रांत में सुन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई संदेश है तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश रखेंगे कि आपके जो संदेश है हम यहाँ से सुना सके। हम अगला सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि रबीन भाई जी ने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों ना एक और पुराने गीत की ओर बढ़ते हैं।

ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है ये सुंदर सुंदर गीतों को, और आज मैं उसी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। भाई रामेश्वर जी ने संदेश को रखे है, और संदेश का बोल ये है कि सीमेंट, जिसे हम सीमेंटी कहते हैं, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नंबर यानी कि द क्वालिटी होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। तो ये सुंदर सा संदेश है जो हमारे लिए और भेजे भाई रामेश्वर जी, धन्यवाद हो आपको। हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और गीत का बोल, गीत जो निकाला गया फिल्म एक फूल दो माली नेखन सस्तख से, और जो बनाया गया, पिक्चराइज किया गया फिल्म

ये सुंदर सा प्यार भरी गीत को हम सुने सुने वालों, ये भी कहा जाता है कि बस अपना प्यार में फंसे मत रहना, और ये भी सुन लेना कि माँ का प्रेम वह अमृत है जिसको पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्यों ना एक वैसा गीत हम सुने।

ये सुंदर सा गीत जो सुनाया गया सभी माताओं के लिए, जो आज कितने माताएं हैं जो अकेले घर से और बैठे हुए, ना कोई बच्चे उनके पास, ना कोई रिश्तेदार उनके पास। प्रकृति ये हमें सिखाते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य को भी, हम लोगों को भी ऐसे, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे सेवा करते हैं, हमारे और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक न एक दिन हम उड़ जाते हैं और बाकी बचते हैं घोंसला में कौन, कहीं माता है कहीं पिता है, और एक न एक दिन फिर वापसी हो जाता है। तो जिंदगी में ये जरूर हमें जानना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छे याद रखे और कुछ बुरे भुला जाइए।

दोस्तों सुनने वालों, पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र।

ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं वो पल, वो फिर कभी नहीं आते हैं, वो फिर कभी नहीं आते हैं। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, ये भी हम जाने कि सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले को भी बुनियाद तक हिला देता है।

ईश्वर जी की ओर से ये संदेश भेजा गया कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

परमेश्वर जी का ये संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों को चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

सुनने वालों, ईश्वर जी ने एक और संदेश को और रखे है, हम उसे भी आपके लिए और सुना देते हैं कि सात समय और समर्पण दुनिया का सबसे अच्छे भेंट है। तो ईश्वर जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा सुंदर सुंदर और संदेश को हमारे लिए भेजते हैं।

हैं एक सुंदर सा दिन आपको होए और कहते हैं कि एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, कोशिश रहे कि कहानी अच्छे हो।

जीवन है, बस यही है जीवन। रिश्तों को कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखी पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए एक शुभ दिवस आपको प्रस्तुत किया जाता है और एक और सुंदर सा ओल्ड इस गोल्ड, जो पुराने गीत के ओर हम प्लेयर पे चुन करके रखते हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और ये हम जाने कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और अकेले होने से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ कि अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं।

जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं। और ऐसा भी है कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं।

और क्यों ना कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण यह है कि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा ओल्ड इज गोल्ड आज उसी मूड में हूँ।

मुसाफिर हो, ना घर हो ना ठिकाना। और दोस्तों यहाँ भी एक संदेश जो हमने इसमें जोड़ देते हैं।

सुनो लो, हम सभी मुसाफिर होते हैं और कहते संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता है।

दोस्तों सुनने वालों, ये गीत सुंदर सा गीत जो किशोर कुमार जी के आवाज़ में कि मुसाफिर है हम यारो, इसी पे कुछ और जोड़ दिया जाता है कि हम जब इस बात को जाने कि पिता कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा तबीयत खराब है। इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। तो आज अपने समय निकाल करके क्यों ना अपने माँ को हम फ़ोन करते हैं, अपने पिता को फ़ोन करते हैं जो आज है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी हैं मुसाफिर और एक ना एक दिन तो वापसी है हम सभी का।

और दोस्तों, इस बात को हम भी जाने कि क्रोध और आंधी सामान्य है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

जिन रिश्ते के लिए रोते हो वो तुम्हारे पूरे जलने तक भी नहीं रुकेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है पर्याप्त है।

दोस्तों, सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि जितना देर तक हम कुछ पुराने गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहे और आप

को जरूर कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए हमारे कोलेखा साथी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सभी को एक शुभ दिवस नमस्कार। Wish you a pleasant day.

तुझे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे अवश्य अवश्य। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बहुत सारे प्यार पेश कर रही हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जरूर से खुश होंगे। कहते भी कि करो शुरुआत मधुर वाणी के साथ।

लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए है मेरे पिता के थाली में से पहला निवाला किसे खाना चाहिए। पिता के थाली से पहला निवाला किसे खाना चाहिए, तो आपको बता दे कि पिता के थाली में से पहला निवाला अगर बेटी खाती है, जी हाँ बेटियाँ, आपके घर में बिटिया है और पिता जो भोजन करने बैठे, तो पिता के थाली में से अगर बिटिया खाती है तो पिता के ये तीन चीज़ें बढ़ती है। माना जाता है कि जब पिता भोजन करते हैं तो बेटी को सर्वप्रथम पहला निवाला उसके थाली में से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पिता के आयु बढ़ती है। ऐसा करने से यानी कि पिता के थाली से अगर बेटी पहला निवाला खाता है तो पिता के आयु बढ़ती है और पिता के रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होती है। और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि पिता के थाली में से पहला निवाला आप अपना बिटिया अपना कन्या को खवाएं।

0: फिल्म सागीट से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पिक्चराइज किया गया है, रिलीज किया गया है नेहन तीन सीफनन सेस्तख में। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,
1: डीएबी प्लस रेडियो, सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

कितनी सुंदर से सुना दे लता जी की, कितना आसान है कहना भूल जाओ, पर इतना आसान तो नहीं है ना। आप मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप शायद अपने ज़िंदगी में भी ये सब महसूस करते हो और मेरे ख्याल से भी मैं माँ किए होगे, वो ये है कि देखो, कुछ लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना ही चाहते हैं, पर जब उनका मन करता है तब, जब उनका मन करता है बस तब तक लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। जब तक उनका मन करता है बस तब तक। कभी कभी कभी जताएंगे कि तुम अपने हो, हाँ कभी कभी वो लोग तुम्हें जताएंगे कि तुम अपने हो, और कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप उनके, उनको तुमसे मतलब कुछ ही नहीं। एक दिन ऐसा बात करेंगे जैसे उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, हाँ कभी कभी ऐसा बात करेंगे कि तुम उनके लिए सभी कुछ हो, और अगले पल, हाँ अगले पल तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसकी सलाह ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि जो ऐसा, तो जो ऐसे लोग, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके, हाँ जी हाँ।

जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना। हाँ, जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ना, बाद में उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलने में। तो आप समझदारी से काम लेना और फरकना परखना अपने इर्द गिर्द में कि आपके साथ ऐसे तो नहीं होता है। आप जितने जल्दी इनमें से निकलोगे, आपके लिए उतनी ही फायदा होगा। Anders wordt u gewoon keer op keer gemanipuleerd en dat verdienen wij niet.

फिल्म लापरवाह से, फिल्म लापरवाह से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म। जी हाँ, नेखती एनन ताख्तख में ये पिक्चराइज किया गया है। किशोर दा जी की आवाज में साथ दे रहे थे चंद्रानी मुखर्जी। साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग के साथ करवे सच, कलयुग के साथ करवे सच वो ये है। पहला ये है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। कई परिवार में ऐसे भी होता है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। आप जिसे खास, जिसे आप खास समझोगे वही दुख देगा। आप जिसे अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा, वही आपको दुख देगा। स्त्रियां भी विवाह करने से इनकार कर देगी, स्त्रियों भी विवाह करने से भी इनकार कर देगी। और ये भी एक कड़वा सच है, अब वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों की प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। ढोंगी व्यक्ति जो है उनकी समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। ईमानदार आदमी पेट भी ना भर पाएगा। और बच्चों और माँ बाप में नहीं बनेगी।

तेरा होके नाचले फिर आपको सुना दे स्टीवन बेन। स्टीवन बेन की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, इंसान कहता है कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाए, और पैसा कहता है मेरे प्यारे कि तुम कुछ करो, कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। ये पैसा का बोल है।

0: मेरे सजना, क्रोध करके वो सब मत गवाइए, क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। और कहते हैं कि उस सुख का त्याग करें, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण है। समय के बात की हमने तो एक शायरी याद यहाँ से आगे, और वो ऐसा है कि किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है। वैसे आपसे भी कोई पूछ ले कि इस दुनिया में आपका कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? ये मुझे पता नहीं है, पर ये जरूर कहूंगी कि किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है, मैंने हंसकर कहा वक्त, समय मेरे हुजूर, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। कुछ जाना पहचाना से है ना शब्द।
1: अच्छा वो छोड़ो।

क्या इसको ही कहते हैं प्यार? बोलो ना। दुनिया की सबसे महंगी चीज है विश्वास। ऐ मेरे दोस्त, विश्वास ही सबसे कीमती चीज है। कमाने में सालों लग सकते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। एक बात ये भी है कि किसी का सरल स्वभाव, सरल यानी कि सिंपल स्वभाव, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप का है, बल्कि उसके माँ बाप

आज का प्रयास, आज का प्रयास कल की सफलता है जरूर। आज आपने मेहनत की कुछ कमाने के लिए, तो कल जरूर उसका प्रभाव आपको जरूर से देखने को मिलेगा। आज का प्रयास कल की सफलता है।

मन्ना दे जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है, चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है ए मेरे दोस्त।

Radaga vai vai, așa pus legi chiavasmi. Sih kuch vakhse ae mere dost, ki sih kuch vakhse. Vakh sikha raha hai ki kab kaise kya karna hai bas. वह सिखा रहा है कि कब कैसे क्या करना है सब बता रहा है हमको बस थोड़ा चौकस रहना चाहिए बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है

इरफान जी की आवाज़ में, इरफान जी की आवाज़ में तेरी याद में सुबह और शाम, सुबह और शाम आप ही के याद में और गुजर जाता है। लगे हाथ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये बात है कि क्रोध के समय, हाँ आप जरा गौर से सुने कि क्रोध जब आपके आए तो उस समय आप थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए तो दुनिया की सब समस्या हल हो जाएगा। नहीं किया है तो करके देखना। ये बातों जो है आप यहाँ सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, हमारे जीवन में जरूर से इसे इसमें सुधार लाएगा। और जीवन में कभी मायूस ना होना, जीवन में कभी मायूस ना होना है मेरे दोस्त, है मेरे मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता।

सनम आया है ये सब नए नए गीत आपके लिए भी लाया है। आप दूर दूर से मेरे साथ जुड़े हैं, हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। जी हाँ, मेरे साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के साथ आप जुड़े हैं। कभी कभी ना आए मेरे दोस्त कि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान दिल की सारी परेशानियां दूर कर देती है। जो अपने सपने को पूरा करने का साहस रखता है ना ए दोस्त, जो अपने सपने को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। बात सही है। और एक ये भी है कि वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है जो किताबों में कभी नहीं, जो किताबों में कभी नहीं लिखा है और जो हम किताबों से नहीं सीख पाती है। ये वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है।

हम लोग वही रिश्ते में चल जाए जहाँ पे है। ओ माई डार्लिंग, आओ माई डार्लिंग, चलो मिलजुल कर कुछ अच्छा समय बिताए।

दस बजकर और दस मिनट गुजर गया है, यानी कि 3:03 हो चला है। शनिवार के सुबह की कार्यक्रम लाइव आपके लिए पेश हो रहे हैं और आज का तारीख है 16 मई। जी हाँ, पांचवा महीना चल रहा है इस साल का और हमारे बहुत से सारे देश निवासी ये कहते हैं कि बहुत सर्दी है। अब वाकई में काफ़ी लोग तो तैयारियां कर चुके थे कि सोमर को फरवेल कॉम करे के और अपना विंटर यास जो है वो सभी तो धोकर प्रेस कर चपोट कर और कास्ट में धर दी थी, अलमारी में एक किनारे धर दी थी और सोमर स्पेल ना फोर हाल कर इस पर अब मौसम के अनुसार वो जो धोए हुए यास था विंटर यास वो सब बाहर निकाला पड़ा, वो सब फिर से अलमारी से निकालना पड़ा क्योंकि मौसम के अनुसार तो हमें यहाँ अपना तन को सुरक्षा रखना है ना। अगर ये न करोगे तो सर्दी जुकाम बुखार ये सब हमको पकड़ लेगा, तो ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपको जुकाम है यानी कि सर्दी है फरकौत है थे तो लोग भी आपको थोड़े से तिरछा ताकेगा कहीं ये मैं भी नहीं बेसमैथ हो जाऊं, तो कोशिश करना सच धज के समय के अनुसार मौसम के अनुसार अपने आप को पहनो, अपने आप को सुरक्षा रखो, बहुत आवश्यक थे। आई माँ सर्दी जब पकड़ लेना स्नोटनेस एंड ऑल दी थिंग अचस एक दफ में एक रोज में दो रोज में ना ऑफर होवे ओके हफ्ता दो हफ्ता लग जा है दस ही फैन खफूल नहीं एस ही फैन खफूल। Auto zwaar beschadigd na een botsing met vrachtwagen. Vrachtwagen, je zorg per vrachtwagen re. De dubbel check-out karna or kelwaar na karna vrachtwagen se. Vooral met de personenauto in de buurt van vrachtwagen, kijk wel goed uit. Het is altijd voorzichtig zijn. Je samachare poeldijkje op de Zuidwijkweg in Poeldijk heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. Door de klap raakte de voorkant van de auto zwaar beschadigd. Hoe het met de bestuurder van de auto gaat en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

और ये समाचार है पेन आकर के स्काद अंद औतो एन बुश ना ओखलक अन औतो एन अ बुश सैन वोन्सदाग ओप एलकार गबोट्स बेदे फुरतुइग सैन दारदोर बस्खादग Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ambachtweg en Zijdeweg in Pijnaker.

वातरेंग के बात है और ये समाचार फिर मैं के है। फिर भी आपको बता देती हूँ, बै अस्तेक पड़ते इन वातरेंग इस मांदख ओख्तन फ्रुख इमांद खवोंद खराक तुए मैंसन सैन आनगहोदन। Het slachtoffer werd volgens de politie neergestoken in een woning aan de Heulweg. Daarna is de gewonde met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

तो यहाँ से आपके लिए कुछ समाचार लगे हाथ आपको बता दी, क्योंकि ये आवश्यक थे कि जानना चाहिए कहाँ पर क्या होता है। वैसे तो बहुत कुछ होता है, पर हम थोड़े थोड़े आपको बता रहे हैं। वादा के मुताबिक आपके लिए कहाँ गया, हाँ आ गए हाथ लगे, ये गीत आपके लिए चलो रे सभी राम से मिले आपके लिए पेश हो रहा है।

हाँ चलो रे, सभी राम से मिले, क्योंकि राम तो हमारा आप सब आपका हम सब का बेड़ा पार करने वाला है। कंचन जी की आवाज में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है एक है खिस्त्रन खलिमलाख, एक है खिस्त्रन खलिमलाख खलाखन, एक खलिमलाख वंदाग, एक लाख ook vandaag en ik zal morgen ook glimlachen en lachen. Reden waarom? Het leven is te kort om niet gelukkig te zijn. Het leven is te kort om niet gelukkig te zijn. Geef elke dag, geef elk moment de kans om de mooiste dag van je leven te worden.

जहाँ अक्सर तो दर्द पहचाना नहीं जाता है, कारण कि ऐसे कई लोग हैं जो दर्द छुपाकर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर धरकर और आगे विचरते हैं, आगे चलते हैं।

0: Atrévete y déjame en coma.
1: Randy by Tali ki awaaz mein ab hum aapke liye laga di hai. Kisi se mujhe pyar hai. Ergens. Ergens goed verstopt. Daar binnen in jou. Ergens weet je ook wel wat je wil en wat je zou. Ergens is geen twijfel, geen angst of wat dan. Ergens is er ook in jou een geloof in wat je kan. Kom op, doe maar dan. Ja, ga ervoor, u kunt het wel. Aur ye na socho ki manai ka boli. Aho, hum manai ke taakenge, hum taakenge, sochenge ki log kya kahenge, to hum waise ke waise wahi ke wahi dhare reh jayenge. तो हम वैसे नहीं पढ़ना है, वैसे नहीं धरना है अपने आप को, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, क्योंकि जो आप सोचते हैं, आपके बगल वाला वही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, तो कदम से कदम हिम्मत बढ़ाओ और आगे बढ़ो. Wees een voorbeeld voor anderen, want als u durft gaat de ander ook durven. En als u het kan, gaat die ander ook in geloven. En dan gaat hij ook een stap vooruit zetten. Kehte hai ki behta pani mein usme zuurstof rehta hai, usme jeev bhi rehta hai. Aur jo pani na bahte hai, फाइफर में जैसे वो बहता पानी नहीं है, तो उसमें गंदगी पैदा हो जाता है. आप तो जानते हैं ना, उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मस्कीटा भी हो जाता है, जो हमको तंग करता है, बीमारी फैलाता है. तो रुका हुआ पानी जैसा नहीं बनना है, बल्कि बहता पानी अपना जीवन को बनाना है. किसी से मुझे प्यार है, नो म्यूजिक म्यूजिक फॉर्मेसी से चलते हैं इस सैटरडे.
2: किसी से मुझे प्यार
1: इस आवर डे इस योर डे.

तो है मेरी किरण, मेरे दोस्तों, नो मर्सी म्यूजिक फॉर्मेशन, विनेश प्रवेश और रेंदी जी के आवाज में सुने हमने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से द एन एख्त आपिका शहर में, और ना सिर्फ आपिका शहर में, वर्ल्ड वाइड कुंत यू दैट बेलुस्टरन वार यू सिख ओक मग फॉर बफिंदन. Als u internet hebt, nou, dan zijn wij ook helemaal bij u. En dan kunt u ook lekker swingen, dansen, genieten. Want wij houden iedereen wakker. Wij houden iedereen in de

0: निशान।
1: इस गीत के साथ मैं आपसे रुखसत हो रही हूँ। हमारा अनाउंसर साथी श्याम पूरन आ गए स्टूडियो में। ब्रेक के बाद वो आपको यहाँ से सेवा करेगा। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज के लिए हम आगे में जाकर आपका आशीर्वाद सहारा के साथ ऊपर वाल की कृपा रहे तो आगे में आकर हम आपके सेवा ज़रूर से करेंगे। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। शुभ दिन होवे।

0: करम कहो किस्मत कहो, करम कहो किस्मत कहो, चाहे कहो तकदीर पहले बना प्रभावत पीछे बना शरीर। करम के गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का यही मरम, प्राण तेरे हाथ में ही प्राणी तेरा अपना ही कर्म। सुनने वालों की सेवा में सादसी नमस्कार, मेरी आवाज और रेडियो पाहुन के कार्यक्रम में आज जो है दोपहर के प्रोग्राम और शनिवार का दिन है 16 मई 2020 मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपकी सेवा यहां से करने जा रहा हूं। अभी प्रोग्राम सुने थे हमारी सहयोगी और देवी जी जो है अपनी अंदाज में प्रोग्राम प्रस्तुत किए शांता जी, यही मैं सोच रहा हूं कि आपको पसंद आया हुआ होगा और यह प्रोग्राम आगे में चलकर मैं अपने अंदाज में जाकर प्रस्तुत करने वाला। प्रथम में जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ प्रार्थना हम कर रहे हैं, माते में तो सहन शक्ति के लिए अवश्य आपके लिए प्रार्थना दुआ करते हम और परमपिता परमेश्वर से यही आपको ये सहन शक्ति प्रदान करें। जिन लोगों के जन्मदिन है आज का दिन खुशी के दिन है और जन्मदिन जैसे भी आप मनाएंगे जिंदगी इसी तरह से आना जाना है ना, तो आज का दिन जो है जन्मदिन के अवसर पर हर एक को बधाइयाँ शुभकामनाएँ देते हैं, यही चाहते हैं कि भगवान जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके वैसे जो है जाकर पूरा हो और जो आप चाहते हो जिंदगी में वह मिले आपको, लेकिन आपको सही राह पे चलना चाहिए ना। जो हम लोग के और परंपरा से हम लोग को मिला है तला दिखिख लो बात पे त्या जो है गुरु लोग बतलाए कौन राह पे चलना चाहिए, तो अवश्य आपको जो है और वही प्राप्त होगा जो आप चाहेंगे। कोशिश करो वो सही राह पे चलने के लिए। और आज के प्रोग्राम में हमारी साथियों जो है अभी आप सुनेंगे जो है जब तक मैं हूँ और मेरा प्रोग्राम जो है अभी तो शुरुआत हुआ है, सैफ उफतवाल फो चला है, कुछ संगीत पेश करेंगे, कुछ इंटरव्यूज होगा और शनिवार के तरह जैसे कि पनीता जो आकर अपने धर्म जो है धर्म की राह पे चलने के लिए अपनी समाज जो सेवा कर रही है वो देवी जी से प्रवचन सुनेंगे। आगे में चलकर श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सुन नाम से जो है और आपके लिए अक्टुअलिटी प्रस्तुत करेगा और जो जिस जो जितना वक्त मैं आपके साथ हूँ हमारे साथियों तो यही सोचा हूँ कि जाकर प्रोग्राम जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ और आपको पसंद आएगा, कुछ गलतियाँ हो जाए माफ़ कर देना साथियों, ये इंसान हूँ ना और चाहता तो नहीं हूँ फिर भी हो जाता है, किससे गलती नहीं होता है, भगवान से गलती नहीं होता है, एक भगवान दुनिया में दो नहीं है, हर एक कोई अपने विचारधारा से जैसे जो मानता है और जानते हैं जो भगवान हर एक को उसी तरह से कल्याण करता है, दुनिया चलाने वाला है, एक ऊपर मक्त है जहाँ से हम लोग फॉरवर्ड एनर्जी पेते दत्वेद अलमाल लोग जो जैसे और जिनके जो समझ विचार जहाँ जो संस्था में जुड़ा हुआ है तो उन लोगों के और अपनी विचारधारा जो है रेस्पेक्ट एयरबीट तो शुरुआत करते प्रोग्राम से आप साथ में लिया। मैं तो सनातन धर्म के पालन करने वाला हूँ और आपके लिए कुछ पल जो है साथ मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ ये पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ और साथ में मिलकर जुड़ जाइए, कुछ गाना हो जाए कुछ पल के लिए हमारी मित्रों और दोस्तों जैसे भी हो, फिर भी खास करके यही हम चाहते हैं हर एक को और जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण हो हमारी दोस्तों, तो चल के सुनते हैं और गुनगुनाइए अगर आप चाहते हो तो साथ में मिलकर कुछ पल के लिए
1: नए भक्ति प्रेम गानों के अपडेट पाने के।
0: हाँ हाँ कुछ पल के लिए गुनगुनाइए और आनंद सुकून आपको हृदय में अवश्य आपको और वो प्राप्त होगा, मैं ये यकीन के साथ

0: तो हर एक के मनोकामना जाकर पूर्ण हो हमारे साथियों। और यूं ही मैं आपसे बतलाता चलूं, भारत के पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो है हॉलैंड में उपस्थित है, आ गया है एक दो दिन के लिए और अपनी कार्य जो कर रहा है पीएम जो है।
1: बोल बोल तू राम रमैया,
0: बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं
1: ना मिलेगा भैया।
0: उनके जरा से प्रवचन मैं आपको सुना दूं अगर आपको इतराज ना हो।
2: डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नेदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है। और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है, ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी है।
0: वाह रे वाह मोदी जी,
2: आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु हैं, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है।

0: जबकि मोदी जी इस वक्त वर्ल्ड फोरम में तैयार उपस्थित है, उनके प्रवचन आप जरा से लाइव सुनते हो।
1: मैं इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की
0: भारत माता की जय हो,
1: भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देवियों और सज्जनों, बहुत

या हमारे साथियों मोदी जी आया है हॉलैंड देश भारत जी के और भारत के जो है जहाँ से हमारे बाप दादा आए कभी वहाँ के पीएम है ना आज

0: और एक दिन तारीख शनिवार का दिन है, 16 तारीख दोपहर के प्रोग्राम आप सुन रहे हो
1: शपथ ना झुकने
0: भारत की। पीएम हॉलैंड में है, उनकी स्वागत हमें जरूर अवश्य करते हैं। हाँ, दोनों हाथ जोड़ कर न सी

नरेंद्र मोदी जी के नाम में एक यू ही मैं कह एक देवता जैसे आए हैं इस धरती पर आकर जो है हमारी सनातन धर्म को उस जगह पे लाए जहां टूटते जा रहा था, जैसे आप जान को मालूम है साथियों, यही कहना है टूट गया दिल अरमान वही है और दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है। हाँ, टूट गया दिल अरमान वही है और दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है। जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे फिर भी, हाँ फिर भी इन आंखों में इंतजार वही है साथियों।

उनके दर्शन आपको करना है यूं ही कॉन्टैक्ट कीजिए और जाइए देखिए इंटरनेट पर, तो उनके दर्शन भी हो सकता है अगर आप चाहे तो। अभी तो वह था वल्टुरम जो है दनहाख में, उनकी प्रवचन आप श्रवण किए।

नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।

वो हमारे साथियों और मोदी जी के नाम आज के कार्यक्रम में ये जो मैंने प्रस्तुत किया वेलकम कहते हैं मोदी जी की पीएम जो है हमारी भारत भूमि से, जहाँ पे हमारे जहाँ से हमारी बाप दादा आए हैं, तो बहुत ही खुश है आज हॉलैंड में उपस्थित है और आकर उनके प्रवचन मैंने आपके सुनाए उन्हीं के नाम और वंदना भी हम करते हैं। यही चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि जहाँ से हमारी बाप दादा और आए हैं हमारे साथियों, तो वही कि हम हमेशा यही कहूंगा और कहने वाला हूं, यही तो हम तो कभी भी नहीं भूलेंगे ना।

साथियों मिनटन फोर इन हो चला है, दो तीन के दरमियान श्रीमान रोली मोहन और एक दो के दरमियान कुछ संगीत आप ही के नाम, और हम स्वागत करते हैं वही शख्स को जो करोड़ों की करोड़ों, एक नहीं दो नहीं हजार नहीं लाखों नहीं करोड़ों की पीएम है सारी सिस्टम में दुनिया में, उनके नाम जो है

एक देवता तरह आया है और समाज इसकी सेवा कर रहा है, धर्म की प्रचार कर रहा है। राजनीति में पूरा देश जो है हमारी धर्म सनातन की रक्षा करने वाला श्री नरेंद्र मोदी जी की वंदना करते हैं जरूर से।

0: वेलकम बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को आज के कार्यक्रम में फाहून के माध्यम से हमारे साथियों। और शनिवार का दिन है और दोपहर के प्रोग्राम 16 मई 2020 तक के दिन पल घड़ी जो बीत गया तो कभी नहीं आने वाला, जैसे आपको मालूम
1: है ना, खाने देगी
0: ये तो घड़ी पल है। और स्वागत हम करते हैं सब मिलकर, वेलकम कहते हैं मोदी जी को ना। तो प्रोग्राम फाहून की ये शाम नहीं, अभी दोपहर के प्रोग्राम सुन रहे हो। और यहीं जरा से बतला दूं, 2 बजे के बाद में कुछ फरमाइशें मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूं ही मैं आपसे बतला दूं कि कुछ फरमाइशें जो मैंने कहा चलाऊंगा जरूर से। और ये कहकर आपसे, जबकि जो है श्रीमान देखूँ तो कौन है, फिर से कहूँ दूँ आपसे, हाँ खुशी के दिन है, शनिवार का दिन है, 7 मई 2020। और फाहून हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटे लगातार आप इसे श्रवण कर सकते हो हमारे साथियों, जिसमें एक खुशी का दिन है। घड़ी पल जिंदगी में हर पल दो है, हम जीते चले खुशी में। आज का दिन 16 मई, भैया विनोद जोराई के लिए एक खास दिन है, उनकी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन है। तो यही हम सब मिलके परमपिता परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करें लंबी आयु के लिए, लॉन्ग लाइफ इन खुद खसौंथेत हमारी। और जाकर भैया विनोद जो है, भैया विनोद के जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं।

नई फैमिली और ये जन्मदिन बहुत ही समारोह के साथ मनाएंगे, सब मिलकर परिवार के साथ मिलकर। न घड़ी आया जाता है,

0: तो जन्मदिन को उसे पर विनोद जुराई के जन्मदिन है, बधाइयां शुभकामनाएं समस्त परिवार मिलके दे रहे हैं, बधाइयां लंबी लंग लाइफ है, खुद खसों थे यही सब मिलके चाहते हैं ना। भाई सुनील और रितेश, बहन भारती जी के तरफ से प्यारा भाई, तीन लड़के जो है देवानिया दामिनी
1: बधाई हो बधाई,
0: और रानू की तरफ से पूज्य पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर

0: हाँ सुपुत्र बेटा विनोद जुराई के जन्मदिन है, माता श्री और पिता श्री सब मिलके बधाइयां शुभकामनाएं गिरे राम खिलावन। भाई बहन जो है सुनील और रितेश के तरफ से इतने प्यारा प्यारा भाई, बिटिया भारती के तरफ से भी अपने भैया ना लड़के देवानिया दामिनी और रानू के तरफ से इतने पूज्य पिताजी, लड़के देशन और सफीरा सब मिलके बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: तू बनके सूरज हर पल हो दूर अंधेरा,
0: श्रीमान विनोद झुराई को विनोद झुराई के जन्मदिन है। लंग लाइफ ए खुद खुशोंते यही सब चाहते हैं और मनोकामना भगवान पूर्ण करे। माता पिता यही चाहते हैं ना, यही आशीर्वाद देते हैं अपने सुपुत्र को।

0: Ja, van harte gefeliciteerd, Vinod ji.
1: Badhaai.
0: Vinod Jurai ke janamdin hai.
1: Shubh din ki badhaai.
0: Irene Ram Khelawan ke aur suputra unki pati Sri. सब मिलकर माता पिता मिलकर आशीर्वाद देते हैं अपने सुपुत्र बेटा विनोद जुराई को और बधाई देते हैं भाई जो है सुनील और रितेश बहन भारती
1: जल थल पवन नगन
0: लड़के
1: अंबर हो तुम तो
0: देवानिया दमिनी और रानू के तरफ से ते पूज्य पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर लड़के देशन और सफीरा सफिया सफीरा के

beste mensen, tussen al 4 minuten over 1 hotel. Dupar hè? Senimar ka din hè? Aur tarik sura, sura mei 2026. 16 mei 2026. Zindagi mein phir kabhi nahi aayega. Ye pal, ye ghadi. Gaya to gaya. To shu karya kijiye. Shu vachan boliye. Shu vichar rakhiye. Aur wahi shu raah pe chalne ki koshish kijiye. Ya toh Irene aur Ram Khelawan ji. Unke damad jo hai. बेटा नहीं दमाद, बेटा के जन्मदिन हैं। तो हम मिलकर फाउन के माध्यम से, क्योंकि ये इरेने जो है मेरा जो है छोटी बहन की तरह है, इसीलिए इसीलिए बहुत से बधाइयां देते हैं। और एक जगह को भूल जाओ ये बात, उनकी बड़े बहन जो है, बड़ा बहन, अभी मैं बतलाना चाहता हूँ जरा से।

Ja, beste mensen, een gezegende dag, mooie dag, hè. 12 minuten over 1, hoort je lachen, hè. Fahun, Hindustani, radio. Haha, Fahun, Hindustani, radio. Hamisa, the best one. We are the best, yehi kehte hain, hamare saathiyon. और अभी हमारे भैया राजेश बदलू के प्रोग्राम आप सुनेंगे। इस वक्त तो है वही मूड में हम है, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी हॉलैंड में है, वेलकम कहते हैं, अतिथि आया है, तो सेवा सत्कार हम करते हैं ना।

Ja, beste mensen, kwart over één. Fahun, kisham, sham yuhi, kehta hun, nikal gaya zubaan se ne, galti ho jata hai, dupahar ke program. शनिवार का दिन है और दो बजे के बाद में श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जी मैथ एक्चुअलिटी

तो हमारे साथियों, खुशी के दिन है, खुशी के घड़ी है, खुशी के पल है ना जिंदगी में, जबकि जन्मदिन है। और जो है जाकर देखा जाए तो इरिन राम खेलावन, उनकी पतिश्री और उनकी सुपुत्र बेटा विनोद जोराई, जोराई के जन्मदिन है आज, जोराई के जन्मदिन है। सब मिलकर बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं, परिवार खुश है और ये जन्मदिन बहुत ही सम्मानों के साथ साथ में मिलकर आज का दिन मनाएंगे। और आज शनिवार का दिन, कभी नहीं भूलेंगे ना जिंदगी में, ये पल ये घड़ी एक बार आता है। जबकि भैया सुनील, प्यारा सा भाई जो है सुनील और रितेश, दो भाई एक बहन जो है भारती के तरफ से, इतने प्यारा प्यारा भाई जो है लड़के, देवानिया दामिनी और रानू के तरफ से इतने पूज्य पिताजी लड़के देशन और सफीरा के तरफ से, खास करके ये जन्मदिन के अवसर पर सब मिल के बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही गा रहे हैं आज के दिन ये घड़ी ये पल, जो सब मिलकर क्या गा रहे हैं, गाता और जो है हर्ष और उल्लास के साथ आज ये पलवार आपस में मिल के ये जन्मदिन बहुत ही सम्मानों के साथ मनाएंगे। और कहते हुए यही बात जो है, जानते हैं ना जब किसी के जन्मदिन होता है तो हर एक कोई यही चाहता है जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते हैं और

Kräne. Ram Klaunke, trifft den Küpati. अपने सुपुत्र बेटा के जन्मदिन के अवसर पर माता पिता मिलके बधाइयां शुभकामनाएं समस्त परिवार खुश है। माता पिता यही आशीर्वाद देते हैं अपने सुपुत्र को।

वाह रे वाह, कलाकार को यही कहना है अपनी तरह से, और जो किया साथियों जो जाकर बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं माता पिता, माता पिता क्या दे सकते हैं ना, माता पिता आशीर्वाद देते हैं। पिता जुराई और माता श्री श्रीमती इरीने राम खेलावन के तरफ से सुपुत्र बेटा विनोद जुराई के जन्मदिन के अवसर पर प्यारा भाई ये जो है दो भाई सुनील और रितेश के तरफ से प्यारा भाई, एक प्यारी सी बहन जो है भारती वो मिलकर भी सब मिलकर भाई को बधाई देते हैं। लड़के दिवानिया दामिनी और रानू के तरफ से पूज्य पिता देशन और सफीरा सब मिलकर बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। इस खुशी के दिन, खुशी के पल, खुशी के घड़ी है साथियों, और आज शनिवार का दिन है जबकि 16 तारीख में और सेस मिनटन फोर जो है चल के हालफ तु चला है ये दोपहर के प्रोग्राम में। बधाइयाँ शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं सब मिलकर, और ये खुशी के दिन हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं आज के दिन। जिंदगी ये पल ये घड़ी भैया विनोद

0: तो हमारे साथियों ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ये जन्मदिन जबकि है और हमारे भैया और विनोद जुड़ाई की उनकी और सुपुत्र बेटा सुनील जो है, सुनील के धर्म पत्नी जो है रोशे भी उनके तरफ से और बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे हैं सब मिलकर हमारी साथियों और परिवार। तो खुश है इदरेस ब्लै फदाख इदरेस ब्लै तो इरेने इदरेस तो ब्लै
1: Ja, zeker.
0: Ja, u bent in de uitzending.
1: Oké. Dames, deze gelegenheid wil ik mijn zoon Vinod van harte feliciteren.
0: Ha, bol, ook al je tenamang,
1: Bohut prem piarse en dularse wens ik hem heel veel geluk en gezondheid.
0: आपके सुपुत्र है बेटा है तो
1: या
0: खुद वही तो है और माता पिता क्या देता है अपने बच्चों के आशीर्वाद ने
1: आशीर्वाद प्यार दुलार उससे बढ़कर कुछ ना है तो
0: आपको हृदय से धन्यवाद और आपको ये आइए जन्मदिन के अवसर पर आपके सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं लंबी आयु लॉन्ग लाइफ है इन खुदे को सौंपते वही हम सब चाहते हैं देवी जी
1: जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू

0: नमस् पापा ए मामा
1: रसना घड़ी
0: भैया विनोद जुराई
1: बोल मेरी रसना घड़ी
0: भाई सुनील उनके धर्म पत्नी रोशिया।

लड़के देवानिया दामिनी और रानू इन लोगों के तरफ से और पूज्य पिता के जन्मदिन के अवसर पर सब मिलकर बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। आगे में चलकर माता पिता जो है वो तो जरूर आशीर्वाद देते हैं। और लड़के देशन और सफीरा के तरफ से बधाइयां भी दिया जा रहा है सब मिलकर श्रीमान जो है विनोद जुराई को। ये खास दिन है, ये दिन जिंदगी में हर पल नहीं आता है ना, और आज का दिन जन्मदिन के अवसर पर

0: लोक समस्त परिवार जो है जाकर बनिता चंद्रा राम खिलावन साहिदीन उनकी पति श्री श्रीमान श्याम साहिदीन के तरफ से इन लोगों के तरफ से बधाइयां शुभकामनाएं। इन लोगों के बेटा के तरह छोटी बहन के जो है सुपुत्र
1: ठंडा ठंडा पानी है भीगा भीगा मौसम है
0: विनोद चुराई
1: है,
0: और यानी के तरफ से भी ना

0: या विनोद जुराई के जन्मदिन है ना, खुशी के दिन है, खुशी के पल है, खुशी के घड़ी है।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला
0: फना
1: ला ला ला ला ला ला ला
0: यार फहत फेलिसिटेट नाम द हेल फैमिली माता पिता भाई बहन

Irene, or Papa Ji, Bhai Bahin, Sunil Ritesh, Sunil ke Dharma Patni, Rosha Ji, और आकर ये खास करके भारतीय बहन जो है लड़के सब मिलकर बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं। देवानिया दामिनी और रानू पूज्य पिता पापा सियारे सफीरा

je erin, Blee? Ja, voor vandaag. Altijd ook, hè? भैया सुनील आपके धर्म पत्नी रोश भी खुश है तेरा जन्म रितेश भारती या भारती देवी जी बिटिया भारती अपने प्यारा भैया को जन्मदिन के अवसर पर बहुत सी बधाइयां देती है देवानिया दामिनी और रानू भी अपने पिता श्री को बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं।

हमारे साथियों हमारे प्रिय मित्रों यहाँ तक का परफॉर्मेंस सुनिए। जबकि भैया विनोद जुराई के जन्मदिन है आज का दिन शनिवार 16 तारीख को, तो इसी अवसर पर और बहुत सी बधाइयाँ शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं भैया और जो जाकर विनोद जुराई समस्त परिवार बेटा बेटी माता पिता और सभी क्लाइंट के अंदर जितने भी है और यही कहते हैं लंग लाइफ, यही सब चाहते हैं ना, शुभ चाहते हैं।

भैया राम राम चने हाल ओके आशीर्वाद तो हमारे साथियों जैसे आपको मालूम है आज शनिवार का दिन है, सात रख बती के सात रख मिनट और दो बज के इंतजार सेस मिनटिन ऊपर ट्वी हो चला है हॉलैंड में सुनाम में और जो देखे सुनाम हॉलैंड अमेरिका जहां भी हो और भारत इसकी जापान समय के फर्स्किल होता है ना यूँ ही आप जानते रहेंगे शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन पावन के माध्यम से और प्रस्तुत जो होता है दो बजे के बाद में हमारे सुनाम के निवासी जो है सुनाम के समाचार देता है हमेशा आकर हमारी भैया राजकुमार रोली मोहन जी तो वो पल वो हो चुका है चला है और फंडिंग मिल चुका है हमारे भैया रोली मोहन से तो यहाँ से आप सुनेंगे क्योंकि मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है मैं इसको और रिकॉर्ड करता हूँ उसके और हरहाल यानी कि फिर से ये प्रस्तुत होता है पावन के माध्यम से तो हमारे साथियों चल के ये

तो हमारे साथियों यहाँ तक का आप सुने श्रीमान राजकुमार लॉली मोहन सुनाम से अपनी समय वक्त लेकर और हम लोग के ये शुभ संदेश दिए। कौन सा शुभ संदेश यही है सुनाम के हालात के बारे में ना?

0: यही मैं कहता हूँ साथी यो कि लोग जो है मुंह पर
1: गाड़ी थोड़े पिछाड़ी
0: राम राम बगल में छुड़ी हाँ भैया राम निमान चुंच बात सहाते यो
1: चुन्नू

फहद सनी मार्क का दिन है और दोस्तों साथियों प्रिय मित्रों यही तो है फाहोन हिंदुस्तान रेडियो मैं भैया सुरेन भगवान डी जी सुरेन हमेशा ऑन रहता है और सुरेन फैन भी कहते हैं

0: तो हमारी साथियों ये फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के प्रभात शनिवार का दिन है 16 मई 2016 18 मिनट ऊपर और इधरी हो चला है ये शाम है। और आज के कार्यक्रम में मैं जो अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसी सोच कर और विचार कर यूं ही कि आपको पसंद आता हुआ होगा, अगर कुछ गलतियाँ हो तो यूं ही आते चाहे हमेशा फरानिंग इसमें परिवर्तन तो होना चाहिए ना भैया सुरेन मोहन जी। और इस नाम से हमारे प्रिय मित्र दोस्त जो है इस वक्त जुड़ा हुआ है और यूं ही उनके नाम मैं लेता हूँ सुरेन मोहन, बचपन के दोस्त थे साथियों। और सुनाम के हालात जो है उनके बारे में ज़रा से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। सुरेन भैया दोनों हाथ जोड़ के अपने शीश नवाए के दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के इसका मतलब यही होता है अपन मुंह नीचे करके दोनों हाथ जोड़ के आपके राम राम सुरेन भैया। हम लोग सब को छोटा इंसान बनती भैया सुरेन। और यही बात सुनाम के हालात के बारे में मैं सोच रहा हूँ इस वक्त इस पल दाखिल सीए को एफबीआई कि कितना पानी भरल बा। हम लोग छोटा से हम लोग पति क्या कहू गए ऐसे एंकल फरने कुमार ऊपर बिलिक एक मिनट या दार ऊपर वाले मीनिंग
1: या मेन मीनिंग इज द थोड़ा आदर्श गुंदक कैनस हैव यू हर्ड फ्रॉम इंटर ट्रूपिस कॉन्फ्रेंसी सोना दस ये वे दा डिंग दी लुख बोवीग मेट दी बेडी केयर करिंग अ तो इवन आर रैंडम द इवन आर और मने को फॉर स्टोरिंग आइल हैगा एंड आई हैव यू दी फॉर वार्मिंग फ्रॉम द आर्द तो आला ले और साके तो लोग सब कोई जाने है एगो फॉर स्टोरिंग है तवार दो लास्ट से बहुत पानी बरसल है और सन्ना में रिसर्वोयर ना है पनिया ऑफ पान करेंगे सविदन में ऐसा धूख न हैप्पी अलीली दौर पी कंती से लाख आवन जा है और सब जगह नोट में सबन बाट के खेत घर उड़ बना ली से तो सहर स्कीन रिसर्वोयर और मत वाटर ऑफ के फांगा तो वही हमारा सब जगह और वाटर स्टेक और खूबे पानी बरसे दो डी स्टोरिंग तो सेल नीनियो स्पेस होगा रोल दोस दैट इज दी वेरल से देगा और वार्मिंग एंड सो फोर्थ और सन्नाम में होनाद में बेफोर बिल ये हैव दी रिजर्वोयर वार्स ऊपर तलक वाटर करना ऑफ फांगा एंड दाना वेख लाते ले देना द सी एंड सो फोर्थ नॉर्थ सी
0: ये भाई मैं ही मैं सुरे नहीं से ऑन द वाटर
1: in Nederland.
0: Ja, natuurlijk. Dat weet u zelf.
1: Ja, maar in Nederland is het gereguleerd hoe het na 24 uur of 12 uur stroomt die weg. Maar ja, maar is al 2-3 dagen dat ze onder water zijn.
0: Maar dus het bad, maar Modi laat me bij ja.
1: Boy, Modi ke Bhagwan pathai se. दुनिया भर में तो त्रास तो हम तो ना हॉलैंड में ना बात देख ले कैसा
0: ना अच्छा मेरे को देख ली बात दूर से सुदेन
1: तू देख ले हम एक ऐप पर खाई लेगा वो फिल्म वहां मोदी के बोली भाई मोदी ही ने मोदी ट्वीट के एक फन जो हेमल ओके ये भी हुई बदले रहा देशवासी मार फॉलो की इतनी बकरी पता की कौन जी एक फाई तो बुदल प्लान के वो करिए
0: We praten niet over half miljoen mensen die uit Suriname. We praten over anderhalf tot 2 miljard mensen op de wereld te Suriname.
1: Ja. Modi is de meest populaire leider, politieke leider in de wereld. Kan ik ook in Amerika met z'n banen hoe kunnen gaan? Ik अरे सब ऑन द फ्राक कर रहा मैं इनसे कहता हाँ तो ये थोक से स्कोर अबे नेट और कौन जी आप ओले धाम जाए कब तो ये सन्नाम
0: अबे नेट रोली मोहन एक घंटा बट जाए से ऊपर दी सिचुएशन ऊपर नाम न्यूज फॉर ये मुझे तो इन्हें ये मुट नहीं ये मार वेल फॉल्क अब एक सेट डेट सोते हैं आलटे तो अब यूट्यूब एंड रोली मोहन हैट हैट हीर ऊपर दे ऊपर दी सिचुएशन नाम व्हाट इस यू मीनिंग
1: Dus kijk, je hebt geen kader hier toch. En die Mamio-regering, dus die zes partijen, die nemen hun mensen geschoold, ongeschoold, in RVC's, overal enzovoorts. En dan krijg je de nodige spanningen en dingen. Maar Chan deed het met geschoolde mensen. Hij zag overal mensen.
0: Met gevoel. Hij deed het met gevoel, ja.
1: Ja. Hij is met gevoel, maar je hebt weinig kader toch? En je moet mensen van je partij ook een beetje geruststellen. Mensen die hebben gewerkt enzovoort. Maar Chan deed het meer nationaal en beter hoor dan deze regering.
0: Tuurlijk, deze regering hij was goed met structuur deed hij dat hè?
1: Ja, hij probeerde het zo nationaal en... algemeen te houden. Maar deze regering neemt gewoon mensen van de straatman in plaats in RVC's. Ze hebben laatst alle 7 mensen van de centrale bank ontheven, toch? RVC. En daar hebben ze nieuwe mensen gezet. Maar goed, dat is hun regering en zij doen het. Chan zou het niet zo radicaal doen.
0: Nee, maar deze mevrouw, onze president, is ze echt racistisch bezig, Soren?
1: Dus ik zou nog niet kunnen zeggen hoor. Het lijkt niet zozeer. Ze doet het misschien bedekt. In ieder geval, ik denk het niet hoor.
0: Waarom alle Hindustan...
1: Je hebt 6 partijen toch? En ze moeten rekening houden. Maar je hebt ook Adin Parmeser daar binnen. Een heleboel Hindustanse jongens van NDP heb je daar. Chotkan, die ex-ministers enzovoorts.
0: Waarom alle Hindustanse mensen ontheven van hun functies?
1: Van hun?
0: Hindustanse ontheven van hun functies, Surin?
1: Nee, ik zou niet zeggen hoor. Ik weet niet, ik heb hier een voorbeeld. Dus, kijk, die mensen van... melkcentrale bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Waar Hindustan, hè, maar er is corruptie daar bij bedrijven. Maar je hebt ook niet-Hindustanen die ontheven zijn, toch?
0: Oké. Nou, nee, ik weet...
1: Bij de centrale.
0: Heb ik...
1: Binnenkamer gebeuren veel rare dingen. Hoor. Naar buiten toe, dan zie je het misschien een beetje raciaal.
0: Dat zegt
1: maar nee. Ze moeten al die partijen goed stemmen, toch? Er is weinig kader, bij. Geschoolde mensen. En vele mensen willen niet in die dingen gaan voor 3-4 jaar. Daar heb, voor je leven heb je een slecht naam. Begrijp je?
0: U bent live in Nooit en ik zo alleen Praan en de hele team van Olijf Boys het allerbeste toewensen. Pater, speciaal Pater. Ja, Pater, ja, ik bevind
1: Pater wel. Is in Nederland.
0: Ja, weet ik.
1: Boom, hij ga je tijd niet...
0: Nee, u bent live in de uitzending. Het is heel erg leuk voor zo'n zaterdagmiddag dat u live bent vanuit Suriname. Dat u tijd op een... Ja, kimti wacht. Lekker, echt waar. Dat u in de uitzending bent. Soren, dank u wel.
1: Ja. Boom, hij graag gedaan hoor.
0: Ja, gaat je goed.
1: Tot een andere keer.
0: Ram.
1: Sitaram.

0: Vaari vaan, vaari nakki, vaari.
1: क्यों ये लोगों के हम सब मिलकर यही कहते हैं कि खास करके हमारी भैया देवेंद्र सिंह शिवनादी, हाँ उनकी आवाज हम सुने हैं क्या सुने हैं? हाँ ये शाम के प्रोग्राम अब धीरे धीरे दोपहर से शाम हो रहा है,

Arre vaa! ये क्या हो रहा है दोस्तों, आप ही बतलाइए। मैं से दी बेले दंक बेल संपार मैं से दिख बेल था बहुर सही दो सिद्ध होने दे।

पाव होने हैं आपके साथ। क्या है पाहुन रात के पाहुन काटो साथ मिलकर दमन सिंह शिवनाथ।

Maya Sir Kitten, Maya Kumahan Girao, Isan Sake, चलाते हैं जो और हमारी सभी साथियों की तरफ से सहयोगी कोली खास वही कहते हैं ना सबके तरफ से मुझे दाख़ है

मंजिल मुश्किल थी पर हम खोए नहीं, डर था दिल में पर हम रोए नहीं, कोई नहीं यहाँ हमारा जो हमसे पूछे जाग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सो रहे।

इसीलिए मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी एक बने किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला ही नहीं। साथियों, मेरी जिंदगी एक बंदी किताब है जिन्हें आज तक किसी ने खोला ही नहीं, जाने खोले है। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं और उसने समझा नहीं। हाँ साथियों, उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और आज जो समझा सका वो मिला नहीं।

वाह वाह उस्ताद सत्यानंद देखा। हाँ हाँ सत्यानंद देखा महान कलाकार ना हमारे ही देश के कलाकार।

जितने किरियार हैं भैया दिल पे रमा दिन, ये भी किरियार हैं। जैसे आप हो उसमें कोई मजाक मैं नहीं करता हूं। संगीत के कलाकार

भैया बिलप रमा दिन। मेरा प्रिय मित्र, मेरा दोस्त, साथी और ये भी निक्रियान जो गा रहा है सत्यानंद रेखा है शोक निक्रियान। निक्रियान का मतलब कोई गलती बात हो रहा है भैया।

वाह वाह कलाकार सत्यनंति देखा दिलीप के नाम दिलीप सा दिलीप और रामादीन के नाम या तो भैया दिलीप रामादीन।

हमारे साथियों, इस वक्त जो है रेडियो पाहुन की शाम के प्रोग्राम में शाम हो चला है, इंतजार 4 बज चुका है। और यहाँ उपस्थित है हमारे भैया कुली का सहयोगी भैया राजेश बदलू आ गया है प्रोग्राम में। उनकी प्रोग्राम अभी कुछ घर के अंदर में उनकी कार्यक्रम आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यूँ ही मैं आपसे ये बतलाता चलूँ

साथियों यही तो बात कहना है कि यहाँ पर ये 6 मिनट व्यतीत हो चला है तो 6 मिनट ऊपर पीर और जहाँ हमारे भैया रिगेश बद्दू उनका प्रोग्राम जो इस वक्त इस पल रहता है उपस्थित हो चला है और उनका प्रोग्राम यहाँ से आप अवश्य ज़रूर सुनेंगे और यहाँ तक मैं श्यामपूर्ण आपकी सेवा किया जो गलतियाँ हुआ हो माफ़ कर देना मेरे कहने में मेरे शब्दों में कोई गलतियाँ हुआ माफ़ कर देना साथियों और यही मैं सोच रहा हूँ दिन अंदाज में और जो अंदाज में मैं इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया आपको पसंद आया हुआ होगा। इस आज इस पल के लिए 16 मई 2024 हो चला है सिर्फ ऊपर फिर शाम है और आपको शुभ शाम। यहाँ हॉलैंड में देख रहा हूँ यहाँ पे धूप तो नहीं निकला हुआ है फिर भी और बारिश हो रहा है आंख नाम वेर और रिजेश बद्दू के प्रोग्राम यहाँ से आप सुनेंगे। मैं अपना प्रोग्राम जो आपके लिए प्रस्तुत किया सभी को मेरे तरफ से राम नाम नमस्कार और यही मैं कह सकता हूँ हर कोई जहाँ भी आप हो खुश रहो भगवान के भक्ति समाज सेवा करते रहो शुभ कार्य करते रहो और मेरे तरफ से सभी को राम नाम नमस्कार हमारे साथियों यही मैं कह सकता हूँ आपके लिए इस वक्त इस पल इस घड़ी।

से गहराता है, तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, अब हाथ अपनी भाषा बोलते हैं। हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर गढ़ते हो।

जब आसमान शंकाओं से गहराता है तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, हम हाथ अपनी भाषा बोलते हैं। हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर गढ़ते हो।

और इसी 14 मिनट निकल चुके हैं और ये भी 5 बज करके आकाशवाणी के दोस्तों बैठक गाना हंगामा आप सुनते हो। मेरा साथ दे रहा है राज, यानी कि हमारा दूसरा भाई और उनके नाम भी है राज। तो सुनते जाना बैठक गाना हंगामा। अभी आप सुनेंगे उसको क्या कहना है। एक बड़ा कलाकार है, यानी कि एक उसके भी एक उसको भी बैठक गाना या तो सेमी क्लासिकल एक कलाकार है। तो आप सुनते जाइए, अभी वो कुछ कहना चाहिए।

Rakesh, Ian Curran, वेस्ट इंडीज के कलाकार यानी कि वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद एंड टोबेगो से लाते हैं

0: अच्छा दोस्तों प्रेमियों, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त उपस्थित हैं एक कलाकार और वो कुछ कहना चाहते हैं, आज हमारे साथ है और कुछ कहने को जा रहा है। और जबकि यहाँ उपस्थित है तो अपना ओर से अपने का अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि कौन वो है और क्या कुछ बता दीजिए अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में कैसे है तोर नाम भाई?
1: हमारा नाम है राजेंद्र चिकू। आज वीकेंड है या हम तो लोग खाते को मोई गाना दराई करेला, सब कोई सुनिए। राम राम।

0: और चिरैया मोरी आपने सुने हैं उस्तादों का उस्ताद राजू सी गुलाम। और ऐसे पता चला है कि ये एक यानी कि उनके स्वर्गवास से पहले ये एक जड़ी से के बोले लास्ट गीत रहा का बोले भाई राजू हाँ तब तू बहुत फैन बटे राजू सी गुलाम के गाना के
1: सही कर वही थे
0: हाँ और कहे के
1: मोई गावे है का
0: मोई गावे अच्छा तब बहुत दुख भाई लोई कि ओकर देहांत के बाद
1: या उस वैसो
0: हाँ तब अच्छा तो तू भी कुछ जैसे पता चलल है कि तू भी ढोलक ओलक बजावे हारमोनिया
1: हम भी ढोलक बजायला हम ओके नेत ना ओके संगे बजाई पहली बात ही तो ओके अच्छा। गाना हम तूने खत्म धर ली एगो दुई और धरबे तूने सुनिए माँ ओकर गाना भी मोई गाना है
0: अच्छा तब राजू शिव गुलाम के आवाज में एगो पुराना वाल धरल जाई का बोले
1: हाँ ठीक है
0: ये भी याद करते हुए

के। और इसे आपने सुने हैं राजू शिव गुलाम के आवाज में, यानी कि उनके याद में इसे पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और पेश करने वाला था हमारे भाई राजू, जो यहाँ उपस्थित है अभी, और कुछ चर्चा करेंगे अपने आपके बारे में।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीलिक बुलाइस्त्रे फिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलिक हेल हार्टलिक डंक। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें या इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजेटर हो, शोज वगैरह इवेंट वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और ये भी वर्ल्ड वाइड। किफ़ायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप कहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ क्यों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आएगा रो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं फाफ मांडा टॉट फ्राइडा फन नई खुश मॉर्गन टॉट फाइव इसमेरा अब द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स। दफ्तर कतार का नंबर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, देन कन्फर्म हिंदुस्तानी रेडियो। यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है। रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं आप 07-362-2047 या तो आप तार करें 07-362-2077 पर स्टूडियो कतार का नंबर। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत, और वो हमेशा की तरह कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक आप सुनेंगे। तो प्रोग्राम में लेकर आते हैं हमारे हॉलैंडीज का एक जबरदस्त गायक जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है एंड फन ऑफ 1983 बखान बैड हाक्स पॉप फॉर्मेसी द स्ट्रेंजर्स, और अभी तक उसी में गाता है और कितने बैंड्स में शोज दे चुका है सुरनाम देश, और कितने देशों में जा जाकर अपना शोज भी दे चुका है। अ ग्रेट सिंगर द ग्रेट बॉबी याकब जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनेंगे कि वादा दिन आया। इट्स अ क्रिसमस सॉन्ग।

दिल दे दिया है मिस्टर केके का स्टाइल में, और संगीत दिया है उनका भाई रवीश कालका एर का बीट्स। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली है हमारे सूरीनाम देश का, निशा मदारन कॉफरेट सॉन्ग है, और अपने ही अंदाज में ये बहुत ही मुश्किल सॉन्ग द ग्रेट श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ नगमा आप सुनेंगे, तुम बिन बाय निशा मदारन।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुरिनाम देश का जबरदस्त गाने वाली डेग्रेट निशा मर्दारन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये कवर्ड सॉन्ग आप सुना तुम बिन ओरिजिनल बाय डेग्रेट श्रेया घोषाल जी जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में और सुनाने को जा रहे हैं एक और महान गायक हमारे हॉलैंडेश का जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और कितने बार सुरिनाम देश में अपना शो देने गया और अभी तक लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और रोज़ाना रेडियो पर इनके नगमे आप सुन सकते हैं हमारे सुरिनाम देश में। मैस्ट्रो नदीम खान जी का सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय द ब्रदर्स ज्वालांत श्याम लक्ष्मण। रीअरेंजमेंट बाय द ब्रदर्स लक्ष्मण।

di vous song, आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया पिछली याद भुला दो तिस्वाल मुइलक मार लोसलात नहीं तो प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे दिस प्रोबेसो फिर मोखलक लॉस्ट लात दैट्स एक्ट दैट नंबर मैस्ट्रो नदीम खान Ray arrangement by the brothers Shyam and Jwala Lakshman. The cover you were just sung up, Shringis, een leuke duet uit de eerste CD van maestro Shahid Bahid Hussein, Indian Diamonds ke saach per ab Shringi Shahid Bahid Hussein, sat der hier hey. उस जमाने का मशहूर गाने वाली आई यार 70-80 द दाम मेट एन मूय स्टेम एंड दी ओंस हेल फ्रूग हेफ्ट फरलाते एंड नैचुरली शहीद ओक बेदे सेन आल वेलन द ग्रेट अबिदा रामजान आपका चेहरा

क्या बात है, होता है यारो लाइफ रिकॉर्डिंग है ना, तो श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया दो मशहूर गाने वाले जो मरहूम हो चुके हैं, द ग्रेट शहीद वाहिद हुसैन एंड अबिदा रामजान, इंडियन डायमंड्स के ब्यूटीफुल सीडी से निकाला हूँ, एंड इट्स द सीडी ओक फ्रॉम शहीद वाहिद हुसैन। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द चटनी क्वीन, बिल्कुल नया सॉन्ग चलत मुसाफिर मशहूर गाने वाली अश्नी माता दिन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान स्पेशल।

Beautiful song, Chalet Moos, Zafir, covered by the Chutney Queen from Rotterdam, Ashni Matadin. एक बिल्कुल नया नगमा है, कुछ तीन महीने हुए हैं निकाली है। रिकॉर्ड जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, क्लोज टू माय हार्ट, बचपन से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे जिगरी दोस्त देव नारायण राम बरन जी का सुपुत्र है और वो भी एक बेहतरीन गायक था हमारे सूरीनाम देश में। नया जमाना ऑर्केस्ट्रा में गाता था और बाद में द इंडियन गार्ड्स खात कुछ सालों तक गाया। उन्हीं का सुपुत्र द बैंड लीडर फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी द स्टार्स जेमी रामबरन जी को लाते हैं प्रोग्राम में। मेयर बकैंथल्स में मिस्टर बल्ले बल्ले कुछ दोस्तों के साथ ये अति सुंदर बयान को तैयार किया है। देर थी तरीका, कुछ दिन हुए है निकाला है, लेकिन कुछ दोस्तों में जब कुछ होते ना, कुछ अंडमंड हो जाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा नगमे तैयार होते हैं। लेट स्पेशल ऑफ द टेक्स्ट खवाहद निमर बाय जेमी रामबरन एंसन फ्रेंड शारोन राफनबर्ग रायन अब्दुल असीज अंत फारिस बरसाती। मिलके सुनते हैं

डूंगा यूं बिखड़ गया हूं मैं, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, सांस मुझ में बाकी है फिर भी मर गए हूं मैं। साथ देने का वादा किया था, साथ देने का वादा किया था, सिकवा सहने का वादा किया था, अगर वो हमारे बिना खुश है तो ये ही सही, कोई क्योंकि हमें तो उन्हें सदा खुश रखने का वादा किया था। दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया, गम को आंखों की छिपाना, गम को आंखों में छिपाना सीख लिया, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, दबा के होंठों को हमने मुस्कुराना भी सीख लिया। दूर जाकर भी हम दूर जा ना सकेंगे, कितना रोएंगे हम बता ना सकेंगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, दर्द इस बात का होगा कि हम आपको भुला ना सकेंगे। यूं तो सदमों में भी हंस लेता था मैं, आज क्यों बेवजह रोने लगा हम, आज क्यों बेवजह रोने लगा हूं मैं, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, फिर आज क्यों लगा सब खोने लगा हूं मैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी तकदीर में ही चाहत नहीं, मेरी किस्मत को लिखकर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, मेरी किस्मत को लिखकर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, पूछा तो बोला ये मेरी लिखावट ही नहीं। था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक है हमारे हॉलैंडीज का, इनका पैदा हुआ है भारत देश मुंबई में, और फनाफ निकदीन ससन तख्त इस है और फर्स्ट इन नीदरलैंड के हम लेर कहने निकदीन 82 तुन है मैं बाबला इन कांचन हीर फॉर सम कॉन्सर्ट वास। En zo lang zijn wij dan vrienden. Hè? Jaren gezongen voor de Haagse topformatie, de Strangers, Diwana Leke Aya, Shekhar Kumar, music by the Indian Express. It's a live recording.

मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का डिग्रेड शेखर कुमार। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द क्वीन ऑफ मेलोडी फ्रॉम हॉलैंड नाइटिंगेल फ्रॉम यूरोप भी लोग बोलते हैं, क्या क्या टाइटल नहीं मिल चुकी है ये महान हमारे गाने वाली को। और हॉलैंड देश का शान है। लता मंगेशकर जी के बहुत ही ढेर नगमे गा चुकी है और जितनी खूबी से ये गा लेती है मखौख से खौर्द, लेकिन आज सुनाने वाली है अलका याग्निक जी का गाया हुआ सुपरहिट सॉन्ग तीन यार खलेद हेफ्सदित नेमोर खुसोंग इन थिएटर तालिया इन सुरीनाम अंडर लीडिंग फ्रॉम रियाज अहमद अली मेट सैन यादगार ऑर्केस्ट्रा। मिल के सुनते हैं गली में आज चांद निकला द ग्रेट मधु लाल बहादुर सिंह।

0: So, Natalia, mach du die.
1: Shabai, shabai, shabai, she beautiful song. Sunai aap sabhi ko hamare Hollandis ka mashhoor gaane wali The Nightingale, Madhu Lal Bahadur Singh, live recording with Yadgar Orchestra uit 2014. मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।

Anjos tadukaustad Surinam des kamahan fankar jispe me nasi garbhe international kalakar ustadukaustad Sri Robi Udit Ram ji. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, एक नौजवान कलाकार सुरीनाम देश हॉलैंडीज का, मेरे ख्याल से 16 साल का था जब ये नगमा वो रिकॉर्ड किया, सोनवा के घरवा, मैस्ट्रो सुजाल उमराव.

नौजवान कलाकार सूर्य नाम दिस हरिन दिस का जिस पे हमें नाज है अम सीकर त्रुत्स उप्तिजैन सुजल उम्राओ। अब जरा आप लोग दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये जो सॉन्ग आप सुनने वाले हैं यारो बिल्कुल नया रिलीज किया गया सॉन्ग है फ्रॉम द प्रिंस शार्मिंग नौजवान कलाकार उभरता हुआ कलाकार जो वर्ल्ड वाइड काफी नाम कमा चुका है हमारे हॉलैंडिस का वन एंड ओनली शिवम राजाराम जी का बिल्कुल नया सॉन्ग रिलीज किया गया और 24 दिसंबर 2024 को। तो मिलके सुनते हैं बैगन बागी मैशअप स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम न्यू न्यू न्यू

Shabash, shabash, shabash, bilkul naya song baigan baagi mashup. Shivam Rajaram, mashhoor gayak hamare All Indies ka, unka bilkul naya naya chutney song release kiya gaya. पवन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द चटनी क्वीन फ्रॉम रॉटरडैम अश्नी मातारिन।

Savage, the Chutney Queen from Rotterdam, Ashni Mata Dingi ke beautiful awaaz mein ati sundar bayan aap shrotaon ke show mein pesh kiya gaya Fahun Hindustani Radio ke madhyam se. Agla bayan sunane ko ja rahe hai The Lion बैठक गाना का हमारे हॉलैंडीज का महान गायक उस्तादों का उस्ताद ग्रेट देवेंद्र सिंह सिन्हा द लायन ऑफ बैठक गाना का बिल्कुल नया सुपरहिट सॉन्ग के सूते ना देवे भैया तो मिलके सुनते हैं जरा ही लाइए वरना मोफो यार यू डोरो

देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो यार वक्त हो चुका है कुछ ज्ञान की बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है श्री सर विलियम टेम्पल, ब्रिट्स डिप्लोमाट एंड एसाइस्ट, 1628-1699। और सर विलियम ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो की, द वाइजहेड फॉर एन मेन्स द सेन बेस्ट फ्रेंड, द वाइजहेड सेन एर्गस्ट फेंड। आगे में कहा श्री आ शोपेनहावर, डच फिलोसोफ, 1788-1860। अब आ शोपेनहावर ने कहा है मनुष्य के बारे में यारो की, अन गेलुकिग लेवन इज अनमोगेलिक, हेट होगस्टे दैट द मेंस बरेकन कान इज अन हेल्दहाफ्टिगे लेवेनस्लोप। Alfred de Musset, Frans schrijver, 1810-1857. Over Alfred de Musset nekha hai, manushya ke bare mein aruki, een mens zonder geduld is als een lamp zonder olie. Een hele goeie hoor. Akimika is die Jean de Boisson, Nederlands schrijver, ook PS van C. Budding, 1918-1985. Oh, Jean de Boisson ne kaha hai manushya ke bare mein aruki, ieder mens heeft wel een hart. Bij sommigen zit het enkel in hun portemonnee. Thomas Mann, Duits auteur, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur, 1929. Leefde van 1875-1955. Thomas Mann, ik haal hem een stukje bij mij aan. Omwille van de goedheid en de liefde moet de mens de dood geen heerschappij over zijn gedachten geven. Karel de Vijfde, Rooms-Duits keizer, 1500-1558. Ook Karel de Vijfde, ik haal hem een stukje bij mij aan. Zoveel talen iemand spreekt, zoveel malen is hij een mens. Abhilokapna Buddha Ji, Sri Siddharth, spirituele leider, geboren als Siddharth Gautam, leefde van 370 tot 450 voor Christus. Als Sri Buddha Nikhaya Manushyaki Barme, als een mens door lagere vreugde te verzaken kan komen tot hogere vreugde, moet hij de lagere opgeven en reiken naar de hogere. Epicurus, Grieks filosoof, leefde van 270 tot 341 voor Christus. Over Epicurus nekahai manushyaki barme yaroki, als u een mens gelukkig wilt maken, voeg dan niet iets toe aan zijn rijkdommen, maar neem iets weg van zijn verlangens. Frans Kafka, Tsjechisch-Duits-talig schrijver, 1883-1924. Frans Kafka, ik ga hem de logica is weliswaar onwrikbaar, maar tegen mens die wil leven, kan zij niet op. De laatste van vandaag, Kahaisri, Joseph Edison, Engels politicus, schrijver en dichter, 1672-1719. O Joseph Edison, ik ga hem een stukje bij mij aan. De mens wordt onderscheiden van alle andere schepselen door het vermogen tot lachen.
तो हमारे पीपरी श्रोताओं भी आप कुछ कहावटे उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ इन बातों से हम लोग तो जरूर सीखेंगे ना। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में द किंग ऑफ बाइट गाना उस्तादों का उस्ताद श्री संदीप बदलू जी, जबरदस्त बैठक गाना सॉन्ग गहरे आज लक्ष्मण।

गाना उस्तारों का उस्ताद मैस्ट्रो संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए। अगला बयान जरा दिल थाम के बैठिए, अब आप श्रोताओं के सेवा में मैं पेश करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक और जबरदस्त इंटरनेशनल कलाकार उस्तारों का उस्ताद पंडित श्री क्रिश राम खेलावन जी साथ दे रहा है मशहूर सिंगर फ्रॉम सूरीनाम मैस्ट्रो कोबरा जैक द पैसा सॉन्ग।

सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया उस्ताद का उस्ताद महान गायक हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार टुगेदर विद मैस्ट्रो कोबरा जैक द पैसा सॉन्ग। अगला बयान तो पहला अध्याय का साथ ही साथ आखिरी सॉन्ग होगा और उस सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हमारे सूरीनाम देश का मशहूर और महान गाने वाली बैठक गाना का महागुरु माँ द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह की दुनिया तो दो दिन का है मेला। सही बात है यारो।

0: शाबाश शाबाश महान गाने वाली, जबरदस्त गाने वाली, हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना का उस्तादिन श्रीमती मोती माला भोला सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: लाइव फ्रॉम द हार्ट

0: इसीलिए मैं आपसे कहता चलूं, ये बात जो है ना, क्या बात है, हमारे साथियों, मिलने बिछड़ने का गम नहीं होना चाहिए। जिंदगी यही आना जाना लगा रहता है, और जो है क्या कहूँ मैं, तो यही सुनाना है आपको ना। और हमारी यानी जी डंकुअल, हमारी इरन जी भैया, खास करके आप लोग के समस्त परिवार को यही कहना है।
1: गर्मी का मौसम आ गया।

Варева. Ва. Тя хубна. Wat hebt u zelf van gevonden? U mag dat aangeven, telefoonnummer 070-362-77. Cello, tum saath mat dena. Mujhe beshak bhula dena. Naye sapne saja lena, naye rishte bana lena. Bhula dena sabhi vaade, sabhi kasme, sabhi naate. तुम्हें जाना इजाजत है, जा सकते हो, जो दिल चाहे वो सब करना, मगर मगर मगर अब किसी से भी अधूरा प्यार, हाँ अधूरा प्यार न करना, यही जो है यूं ही और

0: और ये प्रोग्राम है हमारी साथियों, उदास मत हुआ करो बेवजह लोगों के कदर ना करने पर, बस सब्र रखो, सब्र रखो वक्त उसे आपकी कदर एक ना एक दिन सिखा देगा। हमारी प्रिय सज्जनों, फाहुन की सुनने वालों, साथियों,
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल, न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है दिल।

प्यार जो हम आपस में करते हैं ना दोस्तों, इसमें से जो है दिल जान से यही सोचते हुए कि एक दूसरे की एहसास हो जाएगा, समझ जाएगा, हो जाता है, समझ में आ जाता है, फिर भी चलते चलते क्यों ये मतभेद कभी कभी हो जाते हैं ना। ये जिंदगी है, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यारो हमारे साथियों। यहाँ तारीफ भी होगी और जलील भी किया जाएगा, ये जानते रहना। एनवीज फोर ब्राइट है।

ये सब कुछ शब्दों से नहीं, यूं ही एहसास भी दिलाना पड़ता है। हमारे साथियों, और एक बात अगर आपसे बोल सकता हूँ, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला बैठा बुरा नहीं लगता और आंखों से आंसू भी नहीं गिरते हैं। ऐसा वक्त जिंदगी में आ जाता है कभी कभी ना, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो ठीक अच्छा, और कोई बात ना करे तो भी ठीक वो भी अच्छा, और हमारी बेस्ट में से हमारी प्रिय और सज्जनों,

गीता से निकाला हुआ गीत है। एक्ट किए हैं मीना कुमार जी। पक्की साथ नई खन तीन तुम्हें से ही तक बातचीत हो रहा है।

हाँ यही बात है, अपने बारे में जरा से कुछ कह दूं। हाँ, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूं राही जी। हाँ सुदैव ने, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूं, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूं, एक जिंदगी होना चाहता हूं बिना रिश्ते और रिवाजों का, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूं मैं आज, मैं होना चाहता हूं साथियों, मैं आज मैं होना चाहता हूं। बताइए क्या बात है भैया। चांद रघुनाथ जी धर्मपत्नी शीश प्रोग्राम सुनते हो।

अब एक स्टेशन जनता के पास वाहन हिंदुस्तानी रेडियो है 24 घंटे लगातार इसे आप सुन सकते हो कोई भी काम काज के लिए तो यहीं पर आप दरियाब कर सकते हो मेरी रात को नंबर 9 तक अभी तक मैं आपका सेवक शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ।

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर।
2: लक्ष्मी केंद्र प्यारे लाल।

प्यारे लाल के संगीत पर। कलाकारों की कमाल संगीत ने।

आशा भोसले और साथ में बादशाहों के बादशाह सातों सुरों के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहेब।

हमारे साथियों, आप कार्यक्रम सुन रहे हो कैसा है यूं ही जानना भी चाहता हूँ कभी कभी ना। वैसे तो ऐसा बात तो नहीं कि अकेले बैठ के मैं खुद अपना अपने लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, चला रहा हूँ और खुद अकेले सुनता हूँ कार्यक्रम हर एक सुनने वालों को। और अपनी तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके रिएक्शन जो है और आज का दिन, ये पल, ये घड़ी हमारे साथ जो बिता रहे हो, संगीत और मनोरंजन जो चाहते हम उन स्पानिंग में हर एक कोई चाहता है, यही जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्तों। और जिंदगी जीते चलो उसमें और क्या मेहरबान हम दे सकते हैं। आप ही से बतलाता चलूँ कि हम जो जीते हैं प्यार मोहब्बत में, आपस में मिलकर साथ देते हुए, एक दूजे के, एक दूजे कौन, एक दूजे जिसे कोई रिश्ता है या तो ये और इस सृष्टि में, संसार में, और एक नई जो ब्योरकर है इस दुनिया के, उसके साथ मिलकर हंसी खुशी से वो बांटते चले और वो जो आप देंगे वही मिलेगा। मत भूलना, जो देना है तो देव और वही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा, कर्म इसे कहते हैं हमारी साथियों।

0: आप जो साथ दे रहे हो, आपके साथ जो है बेहद खुजे और सुकून, खुशी, आनंद मिलता है। प्रोग्राम में एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके बारे में आपको कुछ कहना अवश्य आप कह सकते हो अगर आप चाहे तो। हमारी दोस्तों शेर शायरी बेहद पसंद है मुझको, चल के सुनते हैं, गौर से सुनो और क्या कहते हैं हम खास करके जो चल के सुनते हैं।
1: कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है फिर से बोलूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को, बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागवानी हो, मगर जाना ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम।
0: आवाज वही झूठ पत्तों की तरह,
1: सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी, रात भी वैसे ही सर मुंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है, तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में, प्यास न लगती पानी की या नाखून बढ़ना बंद हो जाते, बाल हवा में न उड़ते या धुआं निकलता सांसों से, सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में, नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है।
0: तो आप सुने दोस्तों, जब शेर शायरी के बात होता है तो खास करके एक विशेषज्ञ दर्शक की आवाज और शेर शायरी जो है आपके सुना रहा हूं।
1: कभी रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, रूह देखिए कभी, या शिकारे में किसी पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ डलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने, चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है, रूह देखी है कभी, जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी,
0: और इसी तरह और हर कोई अपने अपने विचार से और ये खास जो शेर शायरी करते हैं। मैं सीख रहा हूँ दोस्तों यूं ही, और जो जाना हूँ अपनी ज़िंदगी में सीखा हूँ तो ज़िंदगी के और जो है ख़ास माँ के पेट से कुछ भी कोई भी नहीं सीख कर आता है दोस्तों। आकर जो है औरत की इज्जत क्या होती है ये बात लड़कों को तब समझ आती है जब वो किसी बेटी की बाप बनते हैं ना। यूं ही शेर शायरी, ये मेरा तरीका है। और शेर शायरी के दोस्तों, प्रिय बेस्ट लिसनर्स, और नसीब के खेल भी अजीब होते हैं। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। हमारी और प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के आप सुन रहे हो, स्केर के दंक वेल फॉर यू। और अतेंसी, आप कार्यक्रम सुन रहे हो और जो है अन, ये एक खास करके एक रेडियो फाहुन के खास फैन है, प्रोग्राम सुनती है, सुतर मेयर के निवासी है। और आज के कार्यक्रम में उन्हीं के नाम से बहुत ही प्यार के साथ अन, और आप ही के नाम से ये खास नगमा जो मैंने आपके लिए चुन रखा हूँ, तो चल के साथ मिल के सुनते हैं अपन उनसे इन अख्त अन सुतरमेर, जो और जिसे खास करके हमारे भाई राजेश बदलू फारियाल कुलीखा जो है और इन लोगों के एक फैन है, ये खास जो है अन, और आज के कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं अन ही राश बिलीफ आप ही के नाम से, वो अलेलो इसरास अनमो ये दाख कहते हुए। Special namens an panuit zoetermeer voor alle lieve luisteraars.

और यही तो हम सब चाहते हैं, ये सलामती हर एक को। जबकि अन सुतरमेर के निवासी प्रोग्राम में साथ दे रहे डंक वेल अन फॉर यू अटेंसी। और ये कार्यक्रम जो है आप सुन रहे हो, ये मैं आपसे बतलाता चलूँ ना, प्यार था हो गया, हाथ था खो गया, हाल बेहाल था सुधर गया, वो वक्त था जो गुजर गया, यार था रूठ गया, मौन था टूट गया, साथ था छूट गया, वादा था वो टूट गया, कुछ था जो हाथ से फिसल गया, वहम था जो सपनों में से निकल गया, मैं समझदार था, हाँ मैं समझदार था जो संभल गया, पर दिल था कि वो पिघल गया, हाथ थे मर गए, घाव थे भर गए, प्यार था निकल गया, वो इंसान था जो बदल गया, हाँ वो इंसान था जो बदल गया, वक्त था गुजर गया, वादा था टूट गया। हमारी दोस्तों शाम है, आपके डरने की कोई बात नहीं, श्याम पूरन मेरा नाम है और आपके साथ जो दे रहा हूँ मैं, आप जो मेरे साथ दे रहे हो, इधरीन तहदिल से शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद।

0: हर एक को अपने अपने अंदाज होता है, ये शेर शायरी के बाद जब होता है दोस्तों। और तो यहाँ एक दो और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और जो है ये जब मैं कहता हूँ कि पेड़ के पत्तों के झूर पत्तों की आवाज़ जो है, आप ऊँचे झूर पत्तों जब आप उस पर चलते हैं तो आवाज़ जो निकलता है उसी तरह से ये ख़ास आवाज़ जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, चल के सुनते हैं। यही महसूस प्यार
1: जगह नहीं और डायरी में कि हिस्ट्री पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अनकहे ख्यालों की राखबू से। ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे, मसल दिया या दबा दिया था बुझे नहीं, वो कुछ उनके टुकड़े पड़े हुए हैं, बस एक दो कशी लेके कुछ मिसरे रह गए थे, कुछ ऐसी नजमें जो तोड़कर फेंक दी थी इसमें धुआं ना निकले, कुछ ऐसे आशार जो मेरे ब्रांड के नहीं थे वो एक ही कश में खांस कर एश्ट्रे में घिस के बुझा दिए थे। इस एश्ट्रे में ब्लेड से काटी रात की नब्ज से टपकते सियाह पत्रे बुझे हुए हैं, छिले हुए चांद की तराशी जो रात भर छील छील कर फेंकता रहा हूं, घड़ी हुई पेंसिलों के छिलके ख्याल की शिद्दतों से जो टूटती रही है। इस एश्ट्रे में हैं तीलियां कुछ कटे हुए नामों नंबरों की, जलाई थी चंद नजमें जिनसे धुआं अभी तक दिया सिलाई से झड़ रहा है, उलट पुलट के तमाम सफों में झांकता हूं कहीं कोई टुर्रा नज्म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूं। तलब लगी है, तलब लगी है, यह एश्ट्रे पूरी भर गई है, यह एश्ट्रे पूरी भर गई है।
0: तो नीता जी आप शेर सुनना चाहती थी ना, आप सुने और समझे, फिर भी ये खास कार्यक्रम जो है आप ही के नाम।

खूब भरी आवाज जो है आप श्रवण किए रेशमा जी डंकवेल और रेशमा जी नन्हा के निवासी प्रोग्राम सुन रही है। और यहाँ मैं जरा से ये आपको भी फिर सुनाना चाहता हूँ, जबकि शेर शायरी के बात होते हैं ना, के बात हुआ और अंदाज के बात हुआ तो आप ही बताइए कि ये शेर जो है आप श्रवण किए आज के ये कार्यक्रम में हमारी, और दोस्तों

तो ये कहना ही पड़ता है आपके कि रोते हुए आंखों में इंतजार होता है, न चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने, क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी उनकी सच होने की इंतजार होता है। आप ही बतलाइए, यही तो, इसी को तो प्यार कहते हैं ना, एहसास को। अजनबी जी से सीखा हूँ, जानता हूँ और यही कोशिश करता हूँ आपके साथ और ये बांटने को।

किस्मत तकदीर में जो लिखा हुआ होता वही तो मिलता है ना। चाहते क्या है और क्या मिलता है, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, नसीब की खेल भी अजीब होते हैं। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है, कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छोड़ जाते हैं जो करीब होते हैं।

मैं खुश नसीब हूँ कि आपके साथ मिल रहा है इस वक्त, किस्मत वाला हूँ। थैंक यू वेल फॉर योर अटेंशन।

दिल तोड़ने के बाद जब हुआ दर्द एहसास होता है, खुशी के बात नहीं है जब तोड़ने के बात हुआ। जोड़ने में तो सुकून खुशी मिलता है, और जबकि माँ के बात हुआ, यहाँ तो प्यार के बात हो रहा है दोस्तों। प्यार माँ क्या होता है, माँ के कदमों में और वही जन्नत है, लोग कहते हैं स्वर्ग है, और वही एहसास महसूस होता है जब माँ होता है ना दोस्तों। माँ हमेशा याद आते रहते हैं। दुनिया में हर एक कोई आपकी फिक्र करना छोड़ सकता है मगर माँ नहीं, ये जानते हो आप। फिर भी और जो है आज के कार्यक्रम में साथ आज जो दे रहे हो खुशी के बात है, और यहाँ हम हुस्न की बात करते हैं। हुस्न इश्क प्यार जो है इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैं नहीं यूं ही संगीत पे आप चल के सुनते हो।

0: हुआ
1: और शब्दों के बाद जबकि हुआ हुस्न और इश्क प्यार सब एक ही होता है दोस्तों। और यूं ही हमारे भैया तिलकधारी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और फ़ोन करते रहते हैं लोग, जितने लोग ने फ़ोन किए व्हाट्सएप किए, व्हाट्सएप के जरिए से प्रोग्राम में साथ दिए, इंटरनेट के जरिए से दे रहे हैं, उन लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भैया तिलकधारी एक दो और मैं आपको ज़रूर से सुनाना चाहता हूँ, ये माँ के बारे में, माँ की ये पवित्र और सब जो है, माँ हो आप तो जानते हो क्या हो आप, खास करके जो है मुश्किल रास्तों में, राह जो कहते हैं, में भी आसान सफ़र लगता है दोस्तों। ये मुश्किल राह जो होते हैं, ये हम चलते हैं ज़िंदगी की और राह में, राही आप ही बताइए, मुश्किल रास्तों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है दोस्तों। यूं ही जो कहते हैं, माँ से बड़ा कोई हमदर्द नहीं और बाप से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं, यो लोग कहते हैं। और शेर शायरी के बाद मैं आपके साथ ये सुना रहा हूँ आज के कार्यक्रम में, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, बस ये दुआ कि मेरी माँ सलामत रहे और मेरी पापा जो है, मेरे पिताजी जो मुझे अच्छा देखते हैं, वो खुश रहे दोस्तों। यही हम सब मिलके और चाहते हैं, चाहते वही मिलता है जो नसीब तकदीर में लिखा हुआ होता है ना। दुनिया में हर कोई आपकी फिक्र करना छोड़ सकता है, हाँ रिश्ते में जो होते हैं कि दुनिया में, सारी संसार में, सृष्टि में, जहां हम जी रहे हैं इस जहान में, कि हर कोई आपकी फिक्र करना छोड़ सकता है, मगर एक माँ जो होता है, माँ के और प्यार माँ, वो कभी नहीं कर सकता है ना दोस्तों। आप इसे आजमाए हो, जानते हो ये बात, यूं ही हर एक कोई को जो है माँ है ना, हर एक के नहीं, फिर भी जहाँ तक है कि माँ तेरी तरह हर कोई मेरी गलती माफ नहीं करता, हाँ माँ, माँ तेरी तरह हर कोई मेरे गलती माफ नहीं करता, और आंसू तो सब देते हैं मगर तेरी तरफ कोई साफ नहीं करता। यह माँ के बारे में यूं ही मैं आपसे कहा दोस्तों, और जो है खास कार्यक्रम वाहन हिंदुस्तानी रेडियो की आप श्रवण कर रहे हो
2: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag, वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। आशा पारेक इस फिल्म में काम किए हैं, साथ में मनोज कुमार जी और सिमी प्राण के साथ में। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भरी दुनिया में आखिर दिल, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे भरी दुनिया में आखिर डिव को समझाने कहाँ जाए, आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी जी। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस ज़रूरी है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हम पेश करते हैं, दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

0: दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले थे दमायती मुकेश जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, फ्रॉम द मूवी मेरे हुजूर।
1: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने ओ

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे मेरे हुजूर है फिल्म का नाम। गम उठाने के लिए मैं तुझिए जाऊंगा, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो मेरे सनम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ, और वो ये है, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता।

ही आप सुन रहे थे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लखो है निगाह में जिंदगी की राह में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ, द टाइटल आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वक्त के बारे में। वक्त सभी जिंदगी में, वक्त सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी गम तो कभी खुशी। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वक्त एक सा रहे। इसलिए अच्छे वक्त में कभी अपनी ज़ात और वक्त पर गुरूर नहीं करनी चाहिए, और बुरे वक्त में कभी ना शुक्र और मायूस नहीं होना चाहिए।

तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। लाट साहेब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।

सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। फ्रॉम द मूवी लाट साहेब से हमने पेश किए हैं मिट्टी का मटका। और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। फ्रॉम द मूवी शिकार से हम पेश करते हैं।

हुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

संबंध तो सुधामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं।

सुनने वालों, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। हंस के शकुन। आज मैं आप लोगों को हंस जो पक्षी है उसके क्या क्या शकुन है उसके बारे में बतलाऊंगी। हंस के दर्शन, उसकी आवाज़ सब शुभ होते हैं। यहाँ तक कि प्रवास करते समय यदि कोई हंस का नाम लेता है तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। प्रवास करते समय यानी यात्रा पर जाते समय, एक बार बोले तो चोरी का भय, दो बार बोले तो धन की प्राप्ति, तीन बार बोले तो दुर्घटना का भय, चार बार बोले तो किसी से झगड़ा, पांच बार बोले तो राज्य से सम्मान मिले। सुनने वालों, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हंस एक बार बोलेगा तो उससे हमें चोरी का भय होता है कि चोरी होगी। अगर वो दो बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि हमें रुपया पैसा मिलेगा। अगर हंस तीन बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय कि हमें चोट लगने का भय हो सकता है। अगर हंस चार बार बोलेगा तो किसी से झगड़ा भी हो सकता है सुनने वालों, और पांच बार बोलेगा तो राज्य से सम्मान मिलेगा।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। टिटहरी, टिटहरी एक पक्षी है, छोटी सी है चिड़िया जैसी, और ज़्यादातर खेतों में बोलती है। अगर वो हो तो उससे क्या लाभ है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। टिटहरी प्रवास करते समय इसकी आवाज़ शुभ होती है। जब ये पक्षी बोलता है और हम यात्रा पर जा रहे हैं और इसकी आवाज़ कानों में पड़े तो शुभ मानी जाती है सुनने वालों। मोर, मोर तो आप सबको पता है सुनने वालों। मोर भूख से पीड़ित या उड़कर बाईं ओर आकर बोले, मिष्ठान की प्राप्ति। अगर मोर पक्षी हमारी बाईं ओर आकर बोलेगा तो हमें मीठा खाने को मिलेगा या मिठाई खाने को मिलेगी। यदि प्रवास कर रहे व्यक्ति को देखकर बोले एक बार तो धन की प्राप्ति, दो बार बोले तो स्त्री सुख, तीन बार बोले तो राज्य दंड का भय, चार बार बोले दुर्घटना का भय, पांच बार बोले कार्य की सिद्धि। सुनने वालों, मोर भी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को देखकर अगर वो एक बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होती है, दो बार आवाज़ करेगा या बोलेगा तो स्त्री का सुख होगा, तीन बार बोलेगा तो राज्य में दंड का भय कि हमें कोई दंड भी मिल सकता है किसी भी कारणवश, अगर चार बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय तो चोट लग सकती है, पांच बार बोलेगा तो कार्य की सिद्धि। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी सुनने वालों।

मैना, हमेशा हम तोता के साथ मैना की कहानी जरूर सुनते हैं। सुनने वालों, तोता मैना का एक जोड़ा होता है। तो मैना, यदि प्रवासी को मैना दिखे तो राह में अशुभ, किसी से झगड़ा तथा धन हानि। बिल्कुल सामने मैना दिखाई दे तो चोर डाकुओं से धन की हानि। पीछे की तरफ मैना दिखाई दे तो मित्र से धन हानि। बाईं ओर मैना दिखाई दो पत्नी को रोग। दाईं ओर मैना दिखे किसी पूजनीय से मन मुटाव। सुनने वालों, जब हमें मैना राह चलते दिखाई दे तो अशुभ, किसी से झगड़ा या धन हानि होती है। हमारे बिल्कुल सामने उड़कर आ जाए तो चोर और डाकुओं से धन की हानि होती है। हमारी पीठ पीछे आ जाए तो मित्र से धन की हानि होती है। बाईं ओर से आ जाए तो पत्नी को रोग होता है। दाईं ओर से आ जाए तो किसी पूजनीय से मन मुटाव, कि जो आपसे बड़ा है, पूजनीय है, उससे हमारा थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, हम उससे गुस्से हो जाएंगे या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना है ये हमारे महान गायक सूरीनाम के महान गायक श्री रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बटेर, बटेर भी एक पक्षी है। यदि यात्रा करते समय बटेर दाहिनी तरफ आगे आकर वापस लौटे और यात्रा में वापस आते समय बाईं ओर आगे जाकर वापस लौटे तो उस व्यक्ति का आने वाला समय अति उत्तम व्यतीत होता है। तीतर, तीतर भी एक पक्षी है सुनने वालों। तीतर प्रवास कर रहे व्यक्ति के यदि तीतर बोलता है दाईं ओर बोलकर पुनः बाईं ओर उड़े तो उत्तम फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थात पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर उड़े तो अर्थ लाभ होता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले कार्य सफल नहीं। उच्च स्वर में आवाज़ करे कार्य में सफलता। विषम संख्या में आवाज़ करे शुभ। आकाश की ओर मुँह करके धन हानि। दोनों ओर आवाज़ करे उत्तम शगुन। सुनने वालों, तीतर अगर किसी यात्री के दाईं ओर बोलकर पुनः बाईं ओर उड़े तो उससे उत्तम फल अच्छा फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थ पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर बोले तो अर्थ लाभ कमती मिलता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि तो उसका गलत परिणाम होता है। सुनने वालों, पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले तो कार्य सफल नहीं होता। उस स्वर में आवाज़ करे कि ऊंची आवाज़ में बोले तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों, विश्व संख्या में आवाज़ करे कि और भी ऊंचा बोले तो शुभ होता है। सुनने वालों, आकाश की ओर मुंह करके बोले तो धन की हानि होती है। दोनों ओर आवाज़ करे तो उत्तम शगुन, अच्छा शगुन माना जाता है। सुनने वालों,

खंजन, सुनने वालों खंजन भी एक पक्षी है, यदि यह इन स्थानों पर बैठा दिखाई दे, घुड़साल, फिलखाने, बाग, महल, लिपि भूमि, दही का बर्तन, छायादार पेड़, फूल पत्ते, फल वाला वृक्ष, तो धन लाभ की आशा, नदी, तालाब, कमल का फूल, गाय की पीठ, पत्ते उपले, दूध वाले पेड़, भवन के मुख्य द्वार, अगर इस जगह पर दिखाई दे तो समस्त व्याधियों का नाश, लता, कांटेदार वृक्ष, सूखा वृक्ष, पत्थर, अधजली हड्डी, मदिरा के घड़े, सुने घर में यज्ञ स्तंभ, अपमान और रोग प्राप्त होता है सुनने वालों। नीलकंठ, नीलकंठ तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत नीले रंग की गाय है, यदि यह दिखे तो दाई और सदैव फलदाई, सामने दिखे अनेक विधन, नीलकंठ और कौआ दोनों दाई और उड़े और कौआ आगे निकल जाए धन हानि, इसके विपरीत नीलकंठ आगे निकल जाए यात्रा सफल, धन का लाभ होता है सुनने वालों।

हम आगे चलते हैं। सुने लो, श्यामा चिड़िया। आपने श्यामा चिड़िया का नाम तो सुनना हो, सुना ही होगा, क्योंकि रामायण में जब मन का 108 है उसमें भी राम जी कहते हैं श्यामा चिड़िया तू ही बता दे कि सीता जी कहाँ पर है। यदि श्यामा चिड़िया दिखाई दे बाईं ओर बोलती कोयल अच्छे फल, दक्षिण ओर बोलती अनिष्ट फल, सामने आकर बोले यात्रा स्थगित के संकेत कि यात्रा टाल देनी चाहिए, पीठ पीछे बोलती शुभ सूचना सफलता, प्रसन्न भाव में क्रिया करती हुई सामने कार्य सिद्धि, प्रसन्न मुख इधर उधर फुदके धन लाभ सफलता, दाएं भाग को खुजाती हुई शत्रुनाश मित्र से लाभ, दाएं भाग को फड़फड़ाती हुई विजय, दोनों ही भागों में शुभ समाचार सफलता, चोंच पैरों से बाईं आंख खोलती हुई वस्त्र आभूषण लाभ, भोजन की तलाश करती हुई सिद्धि अच्छे भोज्य, भोजन पर झपटती हुई अति शीघ्र सफलता, रमन करती हुई स्त्री से लाभ, सूखो बियाबान से हरे भरे की तरफ आते हुए उत्तम फलदायक उन्नति की सूचना, दासियों में आ मिले प्रिय जन्म मिलन, पैरों से दाहिने नेत्र को खुजाती हुई प्रिय जन्म मिलाप, पूछ जल्दी जल्दी ऊंची नीची करती हुई प्रेमिका मिलन, चोंच से सामने या गुप्त अंगों को स्पर्श करती हुई सुंदर से समागम, पैरों से मुंह खुजलाती इच्छित वस्तु प्राप्त, निर्जन सरोवर में नहाती हुई भू संबंध संपत्ति का लाभ, टेढ़ा मुंह करके देखे या भाग जाए झगड़ा हो, आलस्य भरी या बीट करे धन नाश विपत्ति, मुंह के आहार को नीचे फैलाती हुई सांचे धन की समाप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हुई एक जगह झगड़ा दूसरे पर सफलता।

सुनने वालों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें स्वप्न विज्ञान से निकाली गई हैं। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो हमारे सूरीनाम के महान गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में था।

सुनने वालों, मैं आप सबको सुना रही थी श्यामा चिड़िया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जोड़े से अलग भागे, स्त्री से कष्ट हानि, पति पत्नी दोनों के बीच में से पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, निश्चय कार्य में सिद्धि। इसके विपरीत पहले चिड़ा फिर चिड़िया निकले, सिद्धि में संशय। नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उत्तम फल। नीचे की तरफ जाए, अवनीत की सूचना। बाईं तरफ बोलती हुई अच्छी, दोनों तरफ बोलती हुई अति उत्तम फल। उड़कर किसी गंदगी पर बैठे, यात्रा टाल देनी चाहिए। किसी पतंगे को पकड़ने दौड़े और एक के बजाय दो पकड़ ले तो दो गुना लाभ की आशा।

पशु शकुन विचार। अब हम पशुओं की ओर चलते हैं सुनने वालों। बिल्ली संबंधी शकुन। यदि यात्रा आरंभ में बिल्ली हमें मिले तो क्या क्या शकुन होते हैं सुनने वालों, और क्या क्या हानि होती है। बिल्ली अगर रास्ता काट ले हानिकारक, बाईं से दाईं और रास्ता काटे निष्ठ फल, मुख में आहार लेकर आए शुभ, मुख में मांस भरे सामने आए सफलता, किंतु बोले भी तो शुभ, खाली मुख बंद करे शुभ नहीं असफलता, परस्पर लड़ती दिखे तो अशुभ, बाईं ओर रहे शुभ कार्य, घर लौटते समय दाईं ओर रहे श्रेष्ठ, सोते समय ऊपर आ पड़े मृत्यु कारक, किसी के पांव सूंघे स्वास्थ्य खराब रोग, माथे को चाटे राज भय पत्नी विरोध, किसी स्त्री के हृदय को चाटे पुत्र को अनिष्ट कारक, किसी स्त्री के पांव को चाटे अहित कारक यानी हानि, घर में आकर शीघ्र चली जाए रोग शत्रु का नाश।

सुनने वालों देखो, हमें अगर रास्ते में बिल्ली दिखाई दे, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता काट ले, तो वो सभी जानते हैं कि हानिकारक है, वो अशुभ माना जाता है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर हमारा रास्ता काटे तो नेष्ट फल, वो भी थोड़ा सा अच्छा फल है। मुख में आहा लेकर आए, अगर उसके मुंह में कुछ है तो शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुख में मांस भरे सामने आए तो सफलता होती है। सुनने वालों, किंतु बोले भी तो, अगर बिल्ली बोलती है तो शुभ माना जाता है। अगर मुंह में कुछ भी नहीं है, खाली मुख है, खाली मुख शब्द करें तो असफलता होती है। सुनने वालों, अगर बिल्ली लड़ती दिखाई दे तब भी असफलता होती है। सुनने वालों, बाई और आ रही हो तो शुभ कार्य, तो अच्छा माना जाता है। घर लौटते समय दाई ओर से दिखाई दे तो श्रेष्ठ, तो भी अच्छा माना जाता है। सुनने वालों, सोते समय ऊपर आ पड़े कि अगर कोई सो रहा है तो किसी ने घर में बिल्ली रखी हुई है, तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों, वो मृत्यु का कारक होता है, कारण होता है। किसी के पाँव सूंघे, अगर बिल्ली किसी के पाँव सूंघती है तो स्वास्थ्य खराब और वो रोगी हो जाता है। और माथे को चाटे किसी के तो पत्नी विरोध, तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है। सुनने वालों, किसी स्त्री के हृदय को चाटे तो पुत्र को अनिष्ट कारण, तो पुत्र को हानि पहुंचती है। सुनने वालों, किसी स्त्री के पाँव को चाटे तो अहित कारक, तो वो भी अशुभ होता है। सुनने वालों, घर में आकर शीघ्र चली जाए कि घर का चक्कर लगा के फिर बाहर चली जाए, तो रोग और शत्रु का नाश हो जाता है। सुनने वालों,

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सुनने वालों, आपका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो आप हर समय सुनते हो। अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर देर पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नज़र आएगा। सुनने वालों, अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें करके देखें तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा।

जीवन में परेशानियाँ चाहे जितने भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, जीवन में परेशानियाँ तो सबकी होती हैं, चाहे जितनी भी हों,

किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठना व्यर्थ है। आज का दिन जो किस्मत से हमें मिला है, यही अवसर है, इसे जाया ना करें। चुगली की धार इतनी तेज़ होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन हो या मनुष्य के विचार। एक बार स्तर नीचे आ जाता है तो जोखिम बढ़ जाती है। मन के अनुकूल हो तो हरी कृपा और मन के विपरीत हो तो हरी इच्छा। जिसने इस तत्व को धारण कर लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। देर मैंने ही लगाई है तुझे पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर झुकाता गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।

नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना इससे अच्छा व्यायाम दिल के लिए कोई और नहीं। सुनने वालों, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको बातें बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपने अवश्य लाभ उठाएंगे। और ये सब मैं स्वप्न विज्ञान से खोज खोज कर लाती हूँ, तो आशा करती हूँ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट देना। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా అత శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫాహోన్ రేడియో కే సభీ సున్నే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హువే हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज का कार्यक्रम में हमारे और राजेंद्र जी और बबली जी जो यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो बबली जी आप अपने ओर से एंट्री कीजिए, फिर हम सब वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो जिससे हम सब कार्यक्रम को हर बार शुरू करते हैं।
1: वक्त और अध्यापक दोनों हमें सिखाते हैं, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अध्यापक सिखा कर परीक्षा लेते हैं और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: तो जैसे कि आपने सुन चुके हैं कि बबली जी ने भी अपना एंट्री डाल दिए है और हम वही गीत की ओर बढ़ते हैं जिसे हम हर सप्ताह चलाते हैं। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जिसका मन अभी उदास होगा तो ये गीत जरूर सुने और सुन करके और मन का उदासीपन जो है उसे हम दूर करते हैं, ताकि हम अभी जो आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में धमाकेदार संदेश लेकर हम आए हैं उसे हम आपके लिए जरूर प्रस्तुत कर सके। पहले हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे, ये गीत जो हरिओम सरन जी ने और अपने आवाज से हम सब के लिए, आज वो नहीं है फिर भी ये गीत जिंदगी भर जीवित रहेंगे और हर बार भी, खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में जो हम सब चलाते रहते हैं। बबली जी, जैसे कि आज का विषय रखा गया है, विषय का बोल, विषय जो है आज का, जिसका संदेश ये है कि भंडारा का महत्व, तो भंडारा किसको कहते हैं?
1: भंडारा जब हम पूजा पाठ अर्चना करते भगवान की, तो उसके बाद जो सबको प्रसाद दिया जाता है या भोजन खिलाया जाता है उसको भंडारा कहते हैं।
0: उसको भंडारा कहते हैं?
1: हाँ जी।
0: और ये भंडारा ऐसा, क्योंकि यहाँ होलान देश में भी हम सब मंदिर आदि जाते हैं, और देखो अब समय जो ये 2 साल जिसमें महामारी ने अपना और खूब दिखाया, जैसे कि पहले मंदिर भरे रहते थे लगभग 150 लोगों से, तो अब उसके आधा से भी कम हो गए। उसमें कितने लोग जो हम लोग के साथ मिल करके सत्संग करते थे, आज हम लोग के साथ भी नहीं हैं। और यहाँ ये हो जाता है कि क्या भंडारा अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आपके कुछ जानकारी है?
1: अभी धीरे धीरे लोग मंदिर आना शुरू है, तो शायद आगे में चल के भंडारा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता।
0: और ये बताइए कि भंडारा, जैसे हम लोग यहाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि भंडारा जब कोई भी कार्य करे, जैसे कि यज्ञ कराए या कोई यज्ञ, वैसे ऑफिशियल यज्ञ चाहे आप ना कराए पर भंडारा लोग करवा सकते हैं ना?
1: करवाने को हाँ, अपना नाम, कई नाम देते हैं, कई नेते भंडारा करवा सकते हैं, लेकिन यज्ञ करके भंडारा करो तो उसमें सफलता और मिलती।
0: तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब, आज का विषय भंडारा है, उसके बारे में तो अभी तो बस कुछ ना कुछ ये संदेश की ओर हम लोग बढ़े नहीं हैं, पर उससे पहले हमारे विशेषज्ञों लोग जो हमारे लिए खोज करके रखे हुए रहते हैं, तो क्यों ना बबली जी पहले हम थोड़ा सा ये जो पहला संदेश है भंडारा के ओर बढ़ने से पहले, क्यों ना हम पहले अपने सभी सुनने वालों को उसका थोड़ा सा झलक सुना देते।
1: हाँ जी जरूर। इसका विषय कर्म।
0: कर्म यानी कि कर्म, कर्म के साधारण रूप में कैसे क्या कहते कि जो हम करते हैं?
1: हाँ, इंसान जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं, तो कि इंसान जैसे कार्य करेगा वैसे उसको उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा।
0: जैसे करनी वैसे भरनी।
1: हाँ जी, ऐसे ही।
0: क्यों ना हम पहले गीत चला देते हैं?
1: जरूर।

0: का ज्ञान, ये गीत मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने,
1: हाँ जी,
0: इस फिल्म में अपना और कला से कौन प्रदर्शन दिए?
1: मनोज कुमार जी और हेमा मालिनी जी।
0: और ये बताइए कि मुकेश जी के और जो एक महान सिंगर थे और उसके बेटा भी कुछ गीतों को भी गाए हैं ना?
1: हाँ जी, मुकेश जी के बेटे हैं नितिन मुकेश
0: और
1: नितिन मुकेश के बेटे हैं नील नितिन मुकेश।
0: और वो गायक है या एक्टर है या कुछ है, क्या करते हैं?
1: वो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, वो गायक नहीं बने।
0: नील नितिन मुकेश,
1: हाँ जी, मुकेश जी के पोते।
0: ऐसा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सुंदर गीत को सुने कि यह है गीता का ज्ञान, पर आज का विषय जो हमारा है भंडारा। भंडारा लोग क्यों कराते हैं, भंडारा करने से क्या फायदा है, और भंडारा और कितने प्रकार के किए जा सकता है, ये तो हम जानते हैं बबली जी, कि भंडारा में जब जाओ और कोई भी भंडारा करावे तो कम से कम लोग वहाँ जब उपस्थित हो जाते तो लोग वहाँ पर तिलक लगाते हैं ना?
1: हाँ जी,
0: तिलक लगाते हैं। पर अच्छा, अभी विषय की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, भंडारा से पहले कुछ संदेश जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: भंडारे भी दो तरह के हैं, एक लंगर कहलाता है, एक भंडारा कहलाता है।
0: तो लंगर कहाँ पर कहलाते हैं?
1: सिखों में जो सरदार लोग हैं वो गुरुद्वारे में जो भोजन करवाते हैं उसको लंगर कहते हैं।
0: उसको कहते हैं लंगर।
1: हाँ जी, और जो मंदिर में लोग यज्ञ के बाद करवाते हैं उसको भंडारा कहते हैं।
0: ऐसा करवाते हैं कि, हाँ, उसे भंडारा। और पर लंगर का एक विशेषता और है ना?
1: हाँ, लंगर है वो पंक्ति में बैठ के नीचे बैठ के खाया जाता है,
0: नीचे बैठ के खाया।
1: हाँ जी, पंक्ति में बैठ के भोजन किया जाता है।
0: पंक्ति में बैठकर भोजन किया जाता है,
1: हाँ जी। और जो भंडारा है उसमें जब यज्ञ के बाद प्रसाद देते हैं तो सब लोगों को बांटा जाता है।
0: और ख़ास करके देखिए, बात यह है क्योंकि आज का विषय जो हमारे विशेषज्ञ लोग रख दिए हैं, तो जैसे कि ये कोरोना ये महामारी आया है तो अब कुछ कुछ बदलाव भी आने वाला है, कुछ कुछ बदलाव हो चुके हैं। और कुछ मंदिरों में ऐसा हो गया है कि वहाँ पर जैसे कि बैठ के लोग आराम से और अपना भंडारा करते थे, अब ऐसा हो गया है कि लोग इन पैक कर देते हैं और उसे लेकर के आपके अपने घर पे जा करके भोजन करना है। तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक है, अभी तो हम सब इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर संदेश क्या है? और बबली जी, क्योंकि अभी हमारे जो खोजी सेना होते हैं, जो हमारे लिए हमारे विशेषज्ञों है जो हम सब के लिए तेईमा को रखते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ और संदेश उसमें रख देते हैं ताकि हम सब अपने सभी सुनने वालों को, जो ये रेडियो फाहोन है 188 देशों तक ये सुना जा सकता है, और अन्य देशों में जो इस समय जो कार्यक्रम को सुनते हैं, तो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जो डनहाग शहर से न्यूटन स्ट्रीट 25 से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आज का विषय जो भंडारा रखा गया है, और उस ओर बढ़ने से पहले जो विषय से पहले है तो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, कर्म, जिसका विषय है कर्म। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदायी रूप में होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तब यह सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को ही खाना आरम्भ कर देते हैं।
0: तो बबली जी, मादा बिच्छू यानी कि जो बिच्छू होते हैं ना,
1: हाँ जी,
0: जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियन
1: नर, हाँ जी,
0: मादा बिच्छू,
1: हाँ, नर और मादा, नर हुआ आदमी, मादा हुई औरत।
0: ओ ऐसा,
1: हाँ जी।
0: तो ये यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं,
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चों को जन्म तो माँ ही देगी ना, मादा नर नहीं दे सकता था।
0: पर और क्या संदेश है?
1: और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। वो तड़पती है और कहराती है लेकिन यह बच्चे पीछा नहीं छोड़ते, और यह बच्चे उसे पल भर में ही मार देते हैं, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर और असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है।
0: ये तो बड़ा आश्चर्य वाला बात है।
1: हाँ जी, क्योंकि बच्चे पल भर में नहीं मारते, उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं।
0: बिच्छू का विशेष दोस्तों ये कार्यक्रम में हम एक सुंदर सा गीत जरूर इसमें जोड़ देते हैं ताकि हम सब ये संदेश जो अभी बाकी है और आपके लिए रखने वाले हैं।
2: मृत्यु मर

0: ये सुंदर गीत जो फिल्म का नाम लक्ष्मी से निकाला गया, जिसमें अक्षय कुमार ने अपना कला से प्रदर्शन दिया, जिसका और सुंदर संदेश हम सब अभी जो ये गीत के माध्यम से भी कुछ न कुछ संदेश हम सब कोशिश कर रहे हैं यहाँ आपके लिए रखने को। कहने का तो ये है कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो बबली जी, आगे में संदेश बिच्छु का संदेश और क्या संदेश है?
1: मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही यह सभी बच्चे उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। 84 लाख के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को आगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है।
0: तो ये भी कर्मों का फल कहा जाता है ना?
1: हाँ, फल भी कह सकते हैं, जरूर। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में भी कर्म करेगा। नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख मिलते रहेंगे, यह तय है। मनुष्य जन्म बड़े ही मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था, और इनमें से भी कोई सेठ साहूकार या कुछ और होंगे। इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे तो यह भी हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, लेकिन अब गुरु नहीं है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुलाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को भी दो डालती है। हमें चाहिए कि हम नियमती परमात्मा का भजन सिमरण करते रहें और उनका शुक्रिया अदा करते रहें।
0: तो ये संदेश हुआ बिच्छू का, और जो जा करके उनके बच्चों कैसे खा जाते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: और करनी का फल यानी कि 84 लाख योनियों में हम सब भी मनुष्य का जीवन में को प्राप्त हुआ है, और क्या करना है ये तो बस हम किसी को ये नहीं कह सकता क्या ठीक है या अच्छा है। हमें तो बस ये मौका मिला है कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में अपना संदेश को और रखने को। ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ जाए। दोस्तों, अभी हम सब आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं जो भंडारा कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने सुने भी है कि भंडारा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा में, और वहाँ पर लंगर कहलाते हैं, वहाँ पर पंथी में बैठ करके खाना खाया जाता है, और भंडारा भी जो हम सब जैसे सूरीनाम में, वैसे तो ना कि यज्ञ में, हम लोग सूरीनाम में ऐसे बैठते थे जहाँ पर विवाह संस्कार होते थे आदि, तो वहाँ और किस चीज़ का, कहीं केला का पत्ता तो कभी वारी बोंग का पत्ता पे, और अल्मीनियम के गिलास होते थे, सभी एक साथ में बैठ करके और वहाँ पर भी और भोजन करते थे। मेरे ख्याल से उसे भी भंडारा कहते हैं कि नहीं?
1: जरूर, वो भी भंडारा है। भारत में भी पहले अभी भी पत्तल में भंडारा दिया जाता है, जो प्रसाद होता है। और गुरुद्वारे में आजकल थालियाँ चल पड़ी, थाली में देना शुरू कर दिया,
0: क्योंकि हम लोगों ने सूरीनाम में ऐसे होते थे कि जब खाना जब बटाए लगते थे ना, तो पहले पत्ता को ठोक ठाक करके उसे और अपने स्थान से बैठाते थे, फिर जब पत्ता बटा जाता था तो उसके बाद में चावल लाया जाता था, और चावल कहते जो हम लोग भात से कहते हैं ना, भात।
1: हाँ जी।
0: तो भात से हम लोगों ने जब भात जो बटा जाता था तो उसमें एक यानी कि एक कैसे कहते हैं गहराई बना देते थे, क्योंकि गहराई इसलिए बनाया जाता था उसमें, क्योंकि भात के बाद में अभी दाल आने वाले हैं, और दाल कहीं गिर ना जाए, और खाने का राजा कहलाता है दाल को।
1: हाँ जी,
0: तो दाल के लिए हम सब और तैयारियां करने लगते थे। दोस्तों, हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर का विषय है आज भंडारा, और आप भी इस बात को सुन करके कुछ कुछ ख्याल आते होंगे आपके कि भंडारा कैसे हुआ था, होते थे सूरीनाम में, और कहीं कहीं तो कुछ शेख नरासी पहले वाले तो पैरा पे बैठ करके भी, और यानी कि भंडारा अपना खाना आदि और खिलाते थे। क्यों ना हम एक सुंदर गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर संदेशों में संदेश जो आज है तो हम सब आपके लिए रखने वाले हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक को तो सब कुछ मालूम होता है कि कौन नेता कैसा है, कौन मिनिस्टर कैसा है, तभी तो उसको कुर्सी मिलती है।
1: तो ये पब्लिक ये सब जानती है, पर आज का विषय जो हमारे है कि हमें संदेश मिला है कि भंडारा क्यों किया जाता है, कैसे कराया जाता है, और उस पर ज़्यादा तादाद में हम सब तो कुछ न कुछ उसके बारे में बातचीत हो ही चुके हैं, उस ओर बढ़े बबली जी।
0: हाँ जी जरूर। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। लॉकडाउन में लोगों ने जगह जगह खाना बांटा था।
1: हाँ, इंडिया में यहाँ पर भी ना।
0: हाँ जी, पूरे वेरल में
1: कहीं कहीं पे और जा करके खाना को बांटे।
0: हाँ जी, क्योंकि सब लोगों का काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसीलिए सबने खाना बांटना शुरू किया। तो
1: ऐसे भी है कि मंदिरों में भी, मंदिरों से भी, काफ़ी मंदिरों और ब्यूथ हाउस से भी लोग बना बना करके और खाना को और बांटे।
0: हाँ जी, हैरानी की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था।
1: ये भारत का वृतांत है।
0: हाँ जी, भारत का। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को ना काट ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वह लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे, तभी देखा कि वह कुत्ता तेज़ी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी, वह डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ दूर एक झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ झोंपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोंपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है, चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और उसका एक पैर भी नहीं है, गंदे से कपड़े हैं उसके। ओ भैया, यह कुत्ता तुम्हारा है क्या?
1: यानी कि ये कुत्ता जो किसी के जहाँ पर खाना बटा है वहाँ से थैला, थैला कहते हैं जो लिफाफा ना।
0: हाँ जी,
1: तो लिफाफा लेकर के और चले जाते हैं।
0: हाँ, वहाँ से भाग गया और भाग के एक झोंपड़ी, यानी जैसे घास फूस की झोंपड़ी,
1: हाँ, झोंपड़ी बनाते हैं।
0: हाँ जी, झोंपड़ी में घुस गया।
1: तो वहाँ एक व्यक्ति रहते थे।
0: हाँ जी, वो व्यक्ति बेचारा, उसका एक पैर नहीं था और बेचारा गंदे कपड़े पहने हुए तो लेटा

0: उसे कुत्ता मत कहो भाई, वह आदमी बोला। अरे भाई, यह हर रोज़ खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो? ऐसे लॉकडाउन में तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूँगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है, मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
1: तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई कि बेटा कालू खाना खा ले।

अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, ये सुंदर गीत जो पुराने फिल्म से निकाला गया। और बबली जी, इसमें संदेश क्या है? और क्योंकि अभी जो संदेश आप दे रहे थे कि एक कुत्ता जो पशु हो करके और अपने मालिक के लिए और जा करके खाना लाते हैं,

0: तो और संदेश क्या है?
1: हाँ जी, इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं,
0: यानी कि जब वो व्यक्ति कुत्ते के पीछा पीछा करते करते कोठी में आए।
1: हाँ जी, तो दोनों में बातचीत,
0: कोठी और झोपड़ी में अंतर है ना।
1: हाँ जी, झोपड़ी होती है घास फूस से बनी और कोठी तो सुंदर
0: बड़ा घर।
1: हाँ जी, बड़ा घर,
0: बड़ा मकान।
1: हाँ जी, गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूँगा। मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था, तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है।
0: तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत ये भारत देश में एक ऐतिहासिक संदेश जो आप हम सबको सुना रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: और दोस्तों ये संदेश अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ जी,
0: गीत का बोल जो इस समय हम सब कर दे मदद गरीब के

0: फूलो फलो, ये सुंदर गीत जो हम सब चलाए, आज का विषय जो कि भंडारा है और भंडारा का महत्व, अभी तो उस ओर हम सब पहुंच ही नहीं पाए हैं, बस छलांग लगाने वाले हैं। और बबली जी, ये बात तो हम भी जानते हैं कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से, ये बात हम जरूर जानते हैं। पर संदेश में जो आपने रख रहे हैं, ये सुंदर संदेश जो भारत देश के एक इतिहास तथा एक, ये कह सकते हैं इतिहास, अभी हाल ही में जब लॉकडाउन के समय पे हुआ है, अभी हाल ही में ऐसा संदेश जो भारत देश में हुआ है, तो उस संदेश में क्या और रखा हुआ है?
1: हाँ जी जरूर। आगे वो कहते हैं, वह लड़का एकदम मौन हो गया, उसे यह संबंध समझ में नहीं आ रहा था,
0: क्योंकि जो वो जो मालिक तथा जो आदमी,
1: मालिक और कुत्ते का संबंध उस नौजवान को समझ में नहीं आया।
0: ऐसा?
1: हाँ जी। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा खाना खा ले।
0: तो वो आदमी ने कालू बेटा को बुलाया, यानी कि वो कुत्ते को बुलाया।
1: हाँ जी, आवाज़ दी। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा, खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस आदमी ने अपने हिस्से से खाने शुरू किया तो उसे देखते हुए कालू ने भी खाना शुरू कर दिया, दोनों खाने में व्यस्त हो गए।
0: दोस्तों, ये एक अच्छा संदेश है जिसे शायद हम भूल गए होंगे। पहले भी हम कोई भी यज्ञ में और जाते थे, कोई भी और ऐसा कार्य में जाते थे, तो पहले कुछ नियम होते थे कि कौन पहले खाना खाएगा, और उसके बाद में हम सब बच्चे जब थे तो खाने खाते थे। और आज लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, समय से हमें भी बदलना है, पर क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसका जानकारी शायद हम सबको नहीं होगा। पर यहाँ ये संदेश है कि देखिए कि एक पशु जो है, पशु जो जा कर के अपने और मालिक के लिए खाना लाते हैं, खाना मालिक के साथ में खाते हैं, और किस प्रकार से मालिक के खाना प्राप्त करते हैं और फिर खाना को खाते हैं।
1: हाँ जी। उस लड़के के हाथ से डंडा छूट गया, जो पीछे कुत्ते के भागा था उसके हाथ से डंडा छूट गया,
0: यानी कि जो खाना का रखवाला था।
1: हाँ जी। और डंडा नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया, वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी,
0: यानी कि उसे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार का अवभेद हो रहा है यहाँ, किस प्रकार का, और जो एक पशु और एक मनुष्य का।
1: हाँ जी। भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते हैं, कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए।
0: तो कहने के ये बात हो जाता है दोस्तों कि देखो, एक पशु जो अपने और बुजुर्ग, यानी कि अपने और मालिक के लिए खाना तैयार करके और लाते हैं, और तथा वहाँ से छीन करके लिफाफा लेकर आते अपने मालिक के लिए, हमें शायद ये संदेश ये देता रहा होगा कि हम शायद बहुत भीड़ भाड़ की जिंदगी में जी रहे हैं, हमें अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए तो दूर, अपने नाना नानी, आजा आजी, जो हमारे बुजुर्ग है, उनके लिए तो समय है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि हमें बहुत भीड़ भाड़ है, हमें अपने जीवन का करियर को बनाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, और हमें अपना जीना जीना है। तो यहाँ एक ऐसा, एक पशु, एक कुत्ता हो करके, और जो जा करके अपने मालिक के लिए, जो अपने मालिक के सेवा के लिए क्या करते हैं। बबली जी, ऐसा क्यों ना क्यों हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, गीत के बाद में ये संदेश जरूर आप और आगे ले जाना।
1: हाँ जी जरूर।
2: ये समझो और समझाओ।

0: दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ, ये सुंदर गीत जो हम सब कार्यक्रम में रखे। दोस्तों आज का जो विषय है भंडारा, अभी उस ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं। समय पे हम सबको भी ध्यान देना है बबली जी, पर आज का संदेश में जो ये भी संदेश हम रख देते हैं, अपने हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जो अभी संदेश बबली जी ने सुनाई कि एक पशु जो एक कुत्ता और जा करके और अपना संदेश हम मनुष्य को और जाने की देते हैं। कभी काल के हम लोग पशु, आजकल तो व्हाट्सएप बरेख काफ़ी बनते हैं बबली जी।
1: हाँ जी।
0: और व्हाट्सएप बरेख में देखो रंग बिरंगी और संदेश पशु पंछी के ओर से लोग और बना बना करके रख देते हैं, और उसमें हम सब के कितना सीख मिलता है दोस्तों। और आज के विषय जो बबली जी हम सबको आगे सुनाने वाले हैं, क्या संदेश है बबली जी?
1: हाँ जी, आगे वो कहते हैं, रहने दो भाई, किसी और को इसकी ज़रूरत होगी, मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते हुए मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को उतारू है और यह कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीना नहीं, सीधा हमसे लेना।
0: तो ये संदेश है कि वो यानी कि जो भंडारा करते थे तो कुत्ता को ये संदेश देते हैं ना कि आ करके रोज और हाँ खाना ले जाना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अपने मालिक के लिए।
1: हाँ, और 2 पैकेट देंगे कल से।
0: कल से जो छीन कर ले जाते थे उसके छीनने की जरूरत ही नहीं।
1: हाँ जी, अब दोनों के 2 पैकेट मिलेंगे, एक मालिक के लिए एक कुत्ते के लिए। इस संदेश से हमें शिक्षा भी मिलती है।
0: शिक्षा जरूर जरूर, कुछ उसके बारे में आप बताओ।
1: हाँ जी, कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। हमें तो भगवान ने असीम कृपा का मानव जन्म दिया है और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम से किसी मजबूर को लूट रहे हैं।
0: ना ही सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पे, पर आश्रम के नाम पे और ऐसे कितने प्रकार के चीजों पे लोग को लूट मार में लगे हुए हैं।
1: हाँ जी, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है, ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्य कार्य ही नहीं किया और हमारा ये अमोलक जन्म चला गया।
0: तो दोस्तों इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सुंदर शरीर, ये सुंदर काया हम सबको प्राप्त हुआ है, क्योंकि पाना तो सभी चाहते हैं भगवान को, पर पकड़े बैठे हैं अभिमान को। तो अभी हम जो आज का विषय है उस ओर छलांग लगाने वाले हैं, पर क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर गीत जो हम सब सुने और जा कर के जिसमें राजेश खन्ना ने अपना कला से प्रदर्शन किया कि जिसने ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि कभी जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया होगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा संदेश हम सब छलांग लगाने वाले हैं, जो आज का भंडारा है विशेष और यानी कि तेईमा, तो भंडारा से पहले बबली जी मेरे ख्याल से आप फिर कुछ कहने वाले हैं, आप उंगली उठा चुके तो हम आपका माइक जरूर ऑन पे कर देते हैं। और क्या संदेश है?
1: हाँ जी जरूर। चींटी कितनी छोटी,
0: चींटी बोले तो जो चूटी,
1: हाँ जी हिंदी में चींटी कहते तो,
0: हाँ जी
1: चींटी कितनी छोटी है, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा।
0: 3-4 जन्म?
1: हाँ जी।
0: वैसे तो हरिद्वार से ऋषिकेश बस 24 किलोमीटर का फासला है।
1: वो इंसान के लिए ना, चींटी के लिए नहीं।
0: चींटी के लिए 3-4 जन्म लेना पड़ेगा?
1: हाँ जी। लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाएगी।
0: वो तो पैदल ही पैदल 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे।
1: हाँ जी। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भव सागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बतलाए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलें तो वो आसानी से आपको भवसागर पार करा सकते हैं।
0: आसानी से भवसागर पार करा सकते हैं। दोस्तों ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने हम सबको सुनाए, अभी हम एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं। गीत के बाद में हम सब और जो आज का मूल्य संदेश यानी कि भंडारा है उस ओर हम बढ़ने वाले हैं। चला देते हैं ये गीत और फिर उसके बाद में विषय और बढ़ेंगे।
1: हाँ जी।

0: तेरी मेहर बानिया, जो फिल्म जिसमें जैकी श्रॉफ अपना और कला से प्रदर्शन दिया, बबली जी ये फिल्म किस चीज़ के बारे में जा रहा था?
1: ये फिल्म जानवर के ऊपर है, कुत्ते के बारे में, कि कुत्ता अपने मालिक का कितना वफादार है। जैकी श्रॉफ का कुत्ता होता है इस फिल्म में, और पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया है। पूनम ढिल्लों को लोग मार देते हैं, फिर कुत्ता खोजबीन करके लाता है और बताता है जैकी श्रॉफ को कि किसने मारा है पूनम ढिल्लों को।
0: जो जानवर होता है कितना वफादार होता है।
1: हाँ जी, ये दिखाया गया है।
0: चलो आज के विषय जो हम सब रखे हैं, और विषय जो हमारे आज का है भंडारा, विषय जो भंडारा है और उस ओर बढ़ने वाले है, पर भंडारा में क्या मिलता है पहले उस ओर के लिए एक सुंदर सा गीत चला देते हैं, क्योंकि भंडारा में हमें ये पता है कि वहाँ कम से कम खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भंडारा में अभी क्या क्या मिलेगा ये हम सब और सुनने वाले हैं।

0: ना मिलेगा भंडारा में क्या से क्या नहीं मिलेगा। बबली जी, ये बात है कि आज का विषय जो अभी हम सब शुरू किए हैं और भंडारा के ओर हम लोग छलांग लगा चुके हैं, तो संदेश शुरू कैसे होता है?
1: संदेश शुरू होता है, गुरु नानक सच्चे पातशाह रावी नदी के किनारे बैठे थे।
0: गुरु नानक सच्ची पासा,
1: सच्चे पातशाह,
0: ऐसा?
1: हाँ जी। वहाँ पर सेठ धोनी चंद आया, गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, यह कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, यह जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, यह तो किसी का भोजन मानते नहीं, आज कैसे मान लिया? सेठ धोनी चंद ने कहा, महाराज, मेरा एड्रेस किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही तो हूँ। संतो, सतगुरु को घर बुला रहा है और यह नहीं कह रहा, सतगुरु यह घर तो तेरा ही है, यहाँ नगर में 1 लाख मोर होना, किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है, मेरे पास 12 लाख मोर हैं, बाहर झंडे लगे हैं, किसी से पूछ लेना शेर धुनी चंद का घर कहाँ पे है, आज आप बहुत लंगर है, आके खाना।
2: तो लंगर वहाँ पे भारत में बहुत रहता है, तो हाँ, कैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है लंगर का?
1: लंगर सब मिलके बनाते हैं और अपना फिर पहले पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद पंक्ति में बैठकर सब लंगर खाते हैं।
2: हाँ, तो वो सब फ्री रहता है खरातीस?
1: हाँ जी।
2: बहुत अच्छा, भारत में सब इस प्रकार का लंगर होता है। अभी हम भी भारत गए थे तो वहाँ पे लंगर किया था।
3: राजेंद्र जी, हमने देखा व्हाट्सएप बरख पे कि कितने 100 लोग वहाँ था और आपने लंगर करवा रहे थे।
2: हाँ, 700 लोग था।
3: 700 लोग?
2: हाँ।
3: और यहाँ हम सब मंदिरों में बस 50-60 लोग हो जाते तो हम लोग,
2: हाँ,
3: और 700 लोग का और लंगर करवा के आप पहुँच गए।
2: पहुँच गए,
3: तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में अब राजेंद्र जी परेल के पीछे आ गए, क्योंकि हम मुझसे तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो ही जाते हैं, और अब आप आ गए हैं तो कार्यक्रम लगातार आगे की ओर हम बढ़ाने वाले हैं।
2: जरूर।

0: रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दिए भगवान। इसका मतलब है कि रघुपति जो है भगवान जो है वो राजा राम हैं और पतित पावन जिनके पावन में हैं वो सीताराम हैं। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर हो या अल्लाह हो ये कई नाम, भगवान का नाम ही कोई ईश्वर कहता है कोई अल्लाह कहता है, सबको सन्मति सबको अच्छी बुद्धि दे और सबको तार दे। बहुत ही सुंदर जो गाना था संजय जी ने पिटारा से निकाला, शांता जी तभी है नहीं पिटारा लेके, लेकिन अभी संजय जी पिटारा लेके बैठते हैं। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने बढ़ते हुए सतगुरु की जो बात चल रही थी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो तारना था, मर्दाना जी से कहा चल मर्दानिया आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए, यहाँ पंक्तें लगी है, पंक्तें मतलब कई लंबी लाइनें लगी है। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं, सौ ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं, सच्चे पातशाह भी जाकर बैठ गए। सेठ जी ने कहा आ जाओ आप भी यहाँ बैठ जाओ। नानक सच्चे पातशाह ने कहा पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा आप तो बड़े संतोषी हो सबर वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बांटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है। सेठ कहने लगा महाराज जी ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया, आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा तो पिताजी का कल्याण हो गया। सेठ जी ने कहा हाँ महाराज, सौ ब्राह्मण खा के चले गए, सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले और अभी भी लंगर चल रहा है, सबने यहाँ कहा तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में तीन दिनों तक भूखा बैठा है, तीन दिनों से भूखा बैठे हैं। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने कहा ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है न इसे ले जा, वहाँ नदी के पहले परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है बाघ बन के, मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नज़र कर दी है इस थाल में, अब ये प्रसाद बन गया है। सदगुरु के पास दो तरीके के भोग लगता है, एक प्रसाद जो हम पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेवे या गुरु की नज़र पर जावे। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी, पर सच्चे पातशाह की बाणी गुरु नानक जी की नज़र बैठकर सेठ कांप गया। कहने लगा महाराज वो तो बाघ हैं, कहीं मेरे पे ना आ जाए। गुरु नानक जी कहा जा नहीं आएगा तेरे पे, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा, वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनी चंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी दो कदम आगे कभी दो कदम पीछे, मन कभी नहीं मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठकर नदी के परली तरफ गया जहाँ गुरु नानक जी ने कहा था झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ बाघ मिला, और जब झाड़ खड़कने की आवाज़ हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया दुनी चंद के ऊपर, तो सेठ को लगा मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसा ही देखता था, उसकी आँख भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा बापू भूख है, न तेरे लिए गुरु नानक जी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद आया वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा दुनी चंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ, तुझा उनके चरण पकड़ कर वो कहीं चले न जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया, मेरा अंत समा आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई, मेरा अंत समा मुझे लगा, थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूँ। तब निरंकार ने मुझे बाघ की योनि दी, अब जितना मर्जी उतना मांस खा, क्योंकि अंत समय जैसा मन में ख्याल आ जाए नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाता है। आज का हमारा ये वृतांत रहा। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में, जो मेरे भक्त त्रिलोचन ने नरमुक्ति पीताम्बर मंगे हृदय बसे। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, सदगुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। तो इस प्रकार से कल्याण होता है, जो कहानी के माध्यम से लोगों को सुनने को और समझने को मिला, किस प्रकार से हो सकता है, वही सब लोगों को कल्याण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़ते हैं।
1: जरूर नगमे की ओर बढ़े, पर राजेंद्र जी ये बात मुझे, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो शेर अंत समय आने पे और मांस का और बदबू सूंघ लिए थे, उसे मन किया खाने को।
0: हाँ, जब उसका अंत समय हो गया तो अंत समय में इसलिए कहते हैं कि अंत समय जब आता है तो एकदम भक्ति भाव में और प्रभु की ओर श्रद्धा विश्वास करके अच्छी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ उनकी इच्छा मांस खाने की हुई, और जब जो इच्छा होती है उसी तरफ उस योनि में वो व्यक्ति चले जाता है और उसकी बाघ योनि बनी, व्याघ्र यानी बाघ। और फिर परमात्मा ने, प्रभु ने कहा कि जा तू मांस ही खा पूरी जिंदगी भर, खूब मांस खा।
1: तो यानी कि वो शेर का और जा करके जन्म पाया और जाओ कि खूब मांस खाओ।
0: हाँ, बाघ का जन्म पाया और उसने मांस ही खाया और कुछ खाया ही नहीं,
1: बस मांस ही खाए।
0: हाँ,
1: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि किस प्रकार से, और भंडारा का महत्व जो आज हम सब और आपके लिए रखे। राजेंद्र जी, वो गीत की ओर हम सबको बढ़ना है जिसका हमें बेचैनी से इंतजार नहीं है, फिर भी लागी छूटे ना।
0: हाँ, लागी छूटे ना तो बहुत ही बेचैनी से इंतजार रहता है।
1: दोस्तों ये बात हो जाता है कि जिसके मन में ये होता है कि हमारे दो हाथ, हम अपने दो हाथ से कमाए और 100 हाथ को खिलाए, तो जो ऐसा सोचते हैं तो उनके कहावत है कि भंडार हर समय हरा भरा रहता है। तो क्या इसमें संदेश है, क्या सीख है, ये हम आप पे निर्भय रख देते हैं। पर हमारे जो राजेंद्र जी है पनेल के पीछे, वही गीत और बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जी
0: जी,
1: चला दीजिए।
0: जरूर।

हूँ फिर भी निशाना है तेरा, और सोच ले फिर से। दूर तो रेडियो के माध्यम से सब लोग अपने अपने घर में और अपने काम में लगे हैं, लेकिन जो रेडियो का संदेश है एक जगह से बोला जाए और 188 देशों में चले जाता है, जैसा कि संजय जी कहते हैं हर समय, सब लोग वहाँ संदेश पाते हैं। और मुझे लगता है कि संदेश सुन के सबको कुछ ना कुछ ज्ञान का जो भंडार है उन पे उनको भी कुछ मिलता है और उसको आगे की ओर वो अपने लिए कुछ कार्यक्रम अच्छे से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि इतनी प्रेम से रेडियो पावन हिंदुस्तानी को सुनते हैं और उसको विचार करते हैं और हम लोगों को उसका धन्यवाद भी देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सनम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे और अच्छे दोस्त भी ये कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है कि जो कि कार्यक्रम में और सहयोग दिए अपने हमारे साथ, जो बबली जी जो अपने ओर से सहयोग दिए, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार।

यानी कि और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को, और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।